गुरमुख जाता से जग मह काहे आया। गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वड भागी

बुझाए संडा मरका सब जाए पुकारे प्रहलाद आप बिगड़िया प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े दुष्ट सभा में मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रघुराया हाथ खड़ग करता।

उठा। सोकृत करनी सार जप माली, हृदय फेर चले तुध नाली। हर हर नाम जप हो बनवाली, कर कृपा मिल हो सतसंगत। टूट गई माया जमजाली, रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली। तिस घड़िए शब्द सच्ची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली।

रहाओ। तिन मत ऊतम तिन पत ऊतम जिन हृदय वसया बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सत

पंजवां कोट मनोरथ आव है हाथ जम मार्ग कै संगी पांठ गंगा जल गुर गोविंद नाम

जो चित बियै तित बिगर सकाज रहाओ। ठाकुर छोड़ दासी कौ सिमरहै मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करहै तिन निंदा है निगुरे पशु समाना। जियो पिंड तन धन सब प्रभ का, साकत कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भवजल।

निज घर वासी हम सुख पाया ता सब है सुहेले गुर पूरै पिता संग मेले रहाओ। मंदिर मेरे सब ते ऊचे देश मेरे बेअंत अपूछे राज हमारा सद ही निहचल माल हमारा अखूट अबेचल शोभा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीर्त हमारी।

मस्तक भाग, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपालै, सतगुर मेरा मार जीवालै।

ਏਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਪਹਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ।

गुरमत खोज परे तब पकरे तन साव तरास उबरया। पाखंड परम उपाव कर थाके हृदय अंतर माया माया साधु पुरुष।

महे समाहे ज्यों पावै त्यों राख ले सुख नानक पूरा गुर मिले। बसंत महला पंजमा।

आस पै बिन से निरपै पद पाया गुर मिल नानक खसम ते आया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल महियल रब रहया गुर मिल नानक हर हर कहया अष्ट सिद्ध नव निद ए कर्म प्राप्त जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुर मिल नानक कमल प्रगास बसंत महला पंजवां घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल

कुबजा उधरी अंगुष्ट धार बिदर उधार्यो दास्त पहाए रे मन तू पी हर त्याए।

मऊ तिस अर्पौ सब सुख जाई, एक निमुख प्रदर्श दिखावे तिस संतन कै बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती, सेवों दिन रह नाई, मान अभिमान हों सब।

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार परे नाहीं चित डोले मन ही ते मन मानिया।

आई तीर्थ अड़सठ मज्जन नाई सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहा जाहर नवी

हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करै हर जन को मिलया सुख पाइये सब दुर्मत मैल हरै हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त है जा हर गुण बिचरै हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरै जिन ए प्रीत लाई सो जाने कह जाने जिस मन धरै

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर पौ जल जगत तरावै रहाउ, जो गुर पौ जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले अज्ञानी अंधले,

पद त्यो धारण कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुर नाम दृढ़ायो। कानड़ा महला पंजवां।

भाव। भगत सरोवर उछले सुपार भरे बहन, जिन्ना सतगुर मन्या जन नानक वड भाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असम।

सबला नित उठ उठ जूझ मिरकरी जय। काम क्रोध नगर महंस बला नित उठ उठ जूझ करी जय। अंगीकार करहो रख ले वहो गुर पूरा काढ़ कढ़ी जय। अंतर अगन

फिर शाहा वड पुरख स्वामी रहाओ छल नागन स्यो मेरी टूटन होई गुर कहया एह झूठी तोही मुख मीठी खाई कौराए अमृत नाम मन रहया अगहा।

नाम उर तहारं कुल है समूह सगल उदहारं बड़ भागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूह न है।

सगल सुख रास हर हर हारिद सिद्ध नव निध बस है जिस सदा कर। पर त्रै रावण जाहे से ही ताला जी है नित प्रत हिर है पर दर्ब शिदर कत ढाकी है।

मनोरथ कोए ना पूरे ओ, चाले ऊठ निराश। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार, इत उत कत है ना।

ਪਰੈ ਹੀ ਤੈ ਪਰੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰ ਆਪਣੋ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਰ ਓਪਤ ਪਰਲਾ।

ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸੱਤੇ ਸਤ ਪਣੀਐ ਦੂਸਰੇ ਆਨ ਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ।

धर्म है सब कल उधरे एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म सवैये।

रोग दोख अगमो छिदे हर नाम खग। उद्दम कर लागे बहु भांति, उद्दम कर लागे बहु भांति, बिचर है अनक शास्त्र बहु खटुआ, भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते, सूख मुंदे बंद है बहु जटुआ, बिन हर

मुन जन गावे अचल छला गावे गुण तोम अटल मंडल वे भगत पाए रस जाने ओ कब कल सुजा

जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो, जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो। गुण गावहि नवनाथ।

शब्द गुर श्रवण है सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पण्यो, लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद।

पुन दुख नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस तेह नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अगड़ा हे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।

संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। फुन गुरु जल बिमल अथा मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। सदा निर्वैर निरंकार निरपहो जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन भ्रमत जहो नाम

नाम खेल गूढ़ो कियो हर राय संतोख समाचर्यो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो आजोनी संभव्यो।

जाही। गुरमुख हच्छे निर्मले गुर कै शब्द सुभाए, ऊना मैल पतंग न लगई जे चलन सतगुर पहाए। मनमुख

आए। सतगुर पुरख हर ध्यायदा, सतसंगत सतगुर पाए। सतसंगत सतगुर सेम दे, हर मेले गुर मेलाए। एहो भौजल।

जी जात रंगा के नाव सब ना लिखिया बुड़ी कलाम यो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाल्यो रूप केती दाप जाने कौन कूट की ताप साओ एको कवाओ किस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कौन का विचार वारिया ना जावा एक वार जो तू दुबा वैसा ही पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख बाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख पगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पस्तार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच मल पख खाए असंख निंदक सिर करें पार नानक नीच कहे विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख ठाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाहा अखरी ज्ञान गीत गुणगाहा अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे ते सिर नाहे जिस फुरमाए तिव तिव पाए जे ता कीता ते तानाओ विण नावे नाही कोथाओ कुदरत कौन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तू दुभावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार परिय हाथ पैर तन देहे पानी तो तै उतरस खेहे मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लइए ओ तोए परिय मत पापा के संग ओ तो पै नावे के रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख ले जाओ आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ तीरथ तप दया दत्तदान जे को पावे तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आस बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन छिच कवन वार कवन से रुती महाकवन जित हो आकार वेल न पाया पंडती जे होवे लेख पुराण वक्त न पायो काजिया जे लिखन लेख पुराण चित वार न जोगी जाने रुत मह न कोई जा करता सिर्फी को साजे आपे जाने सोई किव कर आखां किव सा

नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन इकवात। सैस अठारह कहन कतेबा अपनू इक तात, लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, साला ही साला है एती सुरत न पाया। नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद ना जानिए, समुंद सहा सुल्तान गिरहा से ती माल तन। कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे, अंत न सिखती कहन न अंत। अंत ना करने देन ना अंत, अंत ना देखन सुनन ना अंत। अंत ना जापे क्या मन मंत, अंत ना जापे कीता आकार। अंत ना जापे पारावार, अंत कारण के ते बिल लाहे, ताके अंत ना पाए जाहे। एहो अंत

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जोद

सोहन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कछ पकाई उथे पाए नानक गया जा पै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे कार्त करिये रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पाप नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत नांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिते नाद विनोद कोड आनंद धर्म खंड की बाणी रूप तिथे कारत करिये बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथे करिये सुरत मत मन बुद्ध तिथे करिये सुरा सिदा की सुध

ताके रूप ना कथने जाहे, ना ओहे मरे ना ठागे जाहे। जिनके राम वसै मन माहे, तिथे भगत वसै के लो, करें आनंद सच्चा मन सोए। सत खंड वसै निरंकार, कर कर वेखे नजर निहाल, तिथे खंड मंडल वर पांड, जे को कथे ता

नानक कथना करड़ा सार, जट पहाड़ा तीर सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत चित ताल, करिए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पावन गुरु पानी पिता, माता तरस महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगियाया बुरियाया वाचे तरम हदूर, करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, सोदर राग आसा मैं।

गावन सुदनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा तरम द्वारे। गावन सुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे। गावन सुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोम तेरे सदा सवारे। गावन सुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दरनाले। गावन सुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन सुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मच पयाले। गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठ की रतनाले। गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे। ते तुदनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले। होर के ते तुदनो गावन से मैं चितना आमन नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सत साहेब साचा साची नाई है भी होती जाए न जाती रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई। ज्योतिष भावे

कह ना जाए तेरी तिलवड़ियाई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड़ियाईया। तुदवे सिद्धि किने न पाया, कर्म मिले ना ही ठाक रहाया। आखन वाला क्या विचारा, सिफती परे तेरे पंडारा। जिस तू दे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारन हारा। आसा मैला पहला, आखा जीवा विसरे मर जाऊं। आखन औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागे पूख। उत पूख है खाए चलिए दुख, तो क्यों विसरे मेरी माए। साचा साहिब साचे नाए राव, साचे नाम की तिलवड़ आई। आप थके कीमत नहीं पाए, जे सब मिलके आखन पाए। वदा न हो वे काट न जाए।

नानक नाम है बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपात। हम चीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड पाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन सुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित में उद्दम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंत उपाए। ताका रिजक आगे कर तरया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे कास्त हरिया रहा। जनन पिता लोक सुख बनता, कोई न किसकी धरया। सिर सिर रिजक समाहे ठाकुर, काहे मन पौ करया। उड़े उड़ आवे सह कोसा, तिस पाछे बचरे चरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करया। सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरया। जन नानक बल बल सद बल जाये, तेरा अंत न पारा वरया। रागा

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे सब त्यावे तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक को पुरुष समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे पुगता जी हम कुछ बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवे तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत पै जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर

रूप समासी से तन जिन हर से आया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तपता पै जपै बेअंता तेरे अनेक परें बहु सिमरत सास जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत परे जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करें सोई तुद आपे सिरत सब उपाय जी तुद आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जन होई आसा मैला चौथा तू करता सत्यार मैं।

गुरनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गुआया, सुध आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई ना है। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया।

अवर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवर ले पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हो जति पति नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिनको नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के, रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हमने।

तित कर गावो सोहेला सिवरे हो सिरजन हारो। तुम गावो मेरे निरपौ का सोहेला, हौ वारी जित सोहेले सदा सुखोए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन।

सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, औद कटे दिन सुरहारे, मन गुर मिल काज सवारे रहाओ, ए संसार विकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जा को आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मने बसेरा, निज कर महल

रंग पसाओ मत देख पूला विसरे तेरा चित ना आवे नाओ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरे तेरा चित ना आवे नाओ सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पू

साचा निरंकार निज काए, सुन सुन आखन आखना जे पावे करे तमाए। रहाओ कुसा कटिया वार वार, पीसन पीसा पाए, अग्गी से ती जालिया, पसम से ती

पंखी होए कै जे पवा सै आसमानी जाओ नदरी किसे ना आवो ना किस पिया न खाओ पी तेरी कीमत ना पवे हौ केवड आखा नाओ नानक कागज लखमणा पढ़ पढ़ की चै पाओ मस्तू तोट ना आवई।

लेखै बोलन बोलना, लेखै खाना खाओ, लेखै वाट चलाइया, लेखै सुन वे खाओ, लेखै साल वाइया, पढ़े के पुछन जाओ। बाबा माया रचना।

रोवन वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल, सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए, कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए, साचा साहिब।

पर निंदा परमल मुखसुदी अगन क्रोध चंडाल रस तस आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामण।

कह कच नाम निवास जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान तिन मत तिन पत तिन तन पल्ले जिन हृदय रहा समाए तिन का क्या सालाना अवर स्वाल्यो काए नानक नदरी बाहरे राचे दान ननाए श्री राग महला पहला अमल गलोला कूड़ का जित्ता देवन हार मत्ती मरण विसारिया खुशी की ती दिन चार सच मिलिया तिन सोफिया राखन को दरबार नानक साचे को सत जान जित सेवे सुख पाये तेरी दरगह चले मान रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा

तामन खीवा जानिए जा मैली पाए था नाव नीर चंगे आईया सत परमल तनवास ता मुख हो वै उजला लख दासी इक दात दुख तिसे पै आखिए सुख जिसे ही पास सो क्यों मनो विसारी है जाके जी प्राण तिस विण सब अपवित्र है जेता पैनन खान होर गल्ला।

जा पत लेखे ना पवे सबा पूज खुआर। जिनको सतगुर था पिया तिन मेट ना सके कोए, ऊना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए। नाव पूजिए नाव मनिए अखंड सदा सच सोए।

सच मिले सच उपजे सच में साथ समाए सुरत होवे पत उगवे गुरु बचनी पौ खाए नानक सच

विचार गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार तिद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए निज कर मैल पछाणिए नदर करे मल तोए।

आओ आप सुजान ना पुल्लई सच्चा वद किरसान पहला तरती साध के सच नाम दे दान नौनिद उपजे नाम एक करम पवे निशान गुर को जान ना जानई क्या किस चज अचार अंधले नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान न चुकई मर जन्मे होए खुआर चंदन मोल अनाया कुंगू मांग संदूर चोआ चंदन बहु कना पाना नाल कपूर जे तन कंतना भावई ता सब अडंबर कूर सब रस पोगन बाद है सब सिगार विकार जब लग शब्द ना पेजी है क्यों सो है गुरुद्वार नानक।

कर्म मिले सच पाए, गुरुमुख सदा निरोध सच्ची कार है सच मिले, गुरमत पल्ले पाए सो नर जमे ना मरे, ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दर्दे पैदा जाए। श्री राग महला पहला, तन जल बल माटी।

कै कट कट सच परपूर आपे मेल मिलावही साचे महल हदूर साए साए तुझ संभला कदे ना विसारे हो जो जो साहिब मन वसे गुरमुख अमृत पियो।

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर प्रभ सेव।

तीसरा रोग वड्डा मन माहे क्यों दर्गे पत पाई है जहाँ हर नवसे मन माहे गुर मिले सुख पाई है अगन मरे गुण माहे मन रे एनिस हर गुण सहारे।

दुर्मुख कूड न पावै, सच रत्ते सच भाए, साकत सच न भावै, कूड़े कूड़ी पाए, सच रत्ते गुर मेले है, सच्चे सच समाए, मन में मानक लाल नाम, रतन पदार्थ हीर, सच वखर तन नाम है, कट कट गहर गंभीर, नानक गुरमुख पाई है, दया करे हर हीर, श्री राग महला पहला, परने पाए ना विजवै, जे पावै दिशंतर देश,

मिल सत्संगत हर पाए गुरमुख हर निवलाए आप गया सुख पाया मिल सलल सलल समाए जिन हर हर नाम न चेत्यो सो अवगुण आवे जाए जिस सतगुरु पुरख न पेट्यो सो पाउ जल पचे पचाए ए मानक जियो निर्मूल है क्यों कौडी बदले जाए जिना सतगुरु

कैसी वस्त्र विसाहिए, जैसी निभ नाल अजैसा सुजान है, लैसी वस्त समाल। पाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर ले।

आओ ऐब तन चुकड़ो इह मन मिहद को कमल की सार नहीं मूल पाई। पौर उस्ताद नित पाथिया बोले क्यों बूझे जान है बुझाई। आखन सुनना पौन की बाणी इह मन रत्ता माया खसम की नजर दिले पसंदे जिनी कर एक तियाया। ती कर रखे पन कर साथी नाव शैतान मत कट जाए नानक आखे।

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंज में आनो आपे वे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पावे नानका हुक्म सोई परवा।

जिसनो आप दयाल होए सो गुरुमुख नाम समाए। पर पर पंगत जोत की वाद करें विचार, मत बुद्ध पवि न बुझई अंतर लोभ विकार। लख चौरासी परम दे परम परम होए खुआर, पूरब लिखिया कमावना कोए न मेचन हार। सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजे आप गवाए, शब्द मिले ताहर मिले सेवा पवे सब थाए। पारस परसे पारस होए ज्योति ज्योत समाए, जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन पुखा पुखा मत करें, मत तू करें पुकार। लख चौरासी जिन श्री सबसे दे आधार, निरपौ सदा दयाल है सबना करदा सार। नानक गुरु।

चित कट है प्रगास। मन मेरे हर हर निर्मल ध्याए, तुर मस्तक जिनको लिखिया से गुरुमुख रहे लिवलाए। रहाओ हर संतो देखो नजर कर, निकट वसे पर

आईरे गुरमुख सदा पत होए हर हर सदा त्याए मल हों में कदै तोए रहा मनमुख नाम न जाननी जिन नामे पत जाए शब्दे साधना आयो लागे दूजे पाए विस्ता के कीड़े पवे विच विस्ता से विस्ता माहि समाए तिनका जन्म सफल है जो चलने सतगुरु भाए कुल उधारे अपना तन जन दी माए हर हर नाम ते आई है जिसनो कृपा करे रजाए जिन्नी गुरमुख नाम से आया विच्चों आप गवाए ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर त्याए श्री राग महला तीजा हर पगता हर तन रास है गुर पूछ करे व्यापार हर नाम सलाहन सला सदा वखर हर नाम आधार गुरपुरे हर नाम दृढ़ आया।

आए रहा। हर भगत हर का प्यार है, जे गुरुमुख करे विचार, ता फंड भगत ना हो वही दुबदा बोल खुआर। सो जन लाया ना रले, जिस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखी है।

नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदिन नाम त्याए सहजे नाम समाए। अंदर रचे हर सच सो रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे भाए गुर सरनाई सुख लहे। अंदिन नाम त्याए रहाओ साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याए। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हों मैं तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल ना उतरे मर जमे हुए खुआर। तातुर बाजी पलस रहे ना उर्वार न पार। गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याय एक नाम करता।

लाग नानक शब्द रते हर नाम रंगाए बिन पै के ही लाग। श्री राग महला तीजा कर ही सौदा पाई है

गुर प्रसादी मन वसै हों मैं दूर करे एहो मन तावत तां रहै जा आपे नदर करे पाई रे गुरमुख हर नाम से आए नाम निधान सद मन वसै महली पावै थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरै ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट चानना।

कर कृपा में लायन हर नाम वस्या मन आए, पोते जिन कै पुन है तिन सत्संगत में लाए। पाई रे गुरमत साच रहाओ, साचो साच कमावना।

हाय लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुरु लोड़ लहो जिद्दू पाईए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक

मन रे सदा पजो हर शरणाई, गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर न जाई। रहाओ इहो शरीर माया का पुतला, विच हो मैं दुष्टि पाई। आवन जाना जम्मन मरना, मनमुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई। सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए। जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए। सदा आनंद रहे दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए। जो सतगुर की शरणागति, हौं तिनकै बल।

पाई रे, गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ, लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए, बिन गुर नींद ना आवई दुखी रहन विहाए, बिन शब्द फिर ना पाई है, बिरथा जन्म गवाए।

देख कुटंब मोह लुबाना चलदियां नाल न जाई। सतगुर सेव गुण निदान पाया तिस दी कीम न पाई। हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई। अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप न जाई। हर जियो दाता भगत वचल है कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड़ियाई। श्री राग महला तीजा। तन जननी जिन जाया तन पिता प्रधान। सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान। दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान। मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसे। मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलिया आए। गुर शब्दी सालाही है रंगे सह सुवाए। सच्चे सच समाया मिल रहे न विछड़ जाए। जो किछ करना सो कर रहा अवर न करना जाए। चिरी विछुन्ने मेलियन सतगुर पन्ने पाए। आपे कार कराए सी अवर न करना जाए। मत तन रत्ता रंग स्यों होमे तज विकार। एनस हृदय रव रहे।

कथनी बदनी ना पाई है, हौ मैं विच्चों जाए, सतगुर मिले है, सद पैर चै आप बसे मन आए। पाई रे गुरमुख बूझे कोए, बिन बूझे कर्म कमावणे,

कृपा करे गुर पाइए हर नामो दे दृढ़ाए बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए मन रे दूजा पाव चुकाए अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार हर का नाम मन वसे होमे क्रोध निवार मन निर्मल नाम से आये ता पाए मोख द्वार होमे विच जग बिन सदा।

समाए। शब्द मने गुरु पाईए विच्चों आप गवाए, अम दिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए, नाम पदार्थ मन वस

पुरुख ना पछाणिया अभिमान मुठे अंकार सतगुरु क्या फिटकिया मंग थके संसार सच्चा शब्द ना सेवियो सब काज सवारण हार मन मेरे सदा।

त्यों जाए। मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मोह देसी जाए। सब किच आपे आप है हौ मैं विच कहन ना जाए। गुर कै शब्द पछाणिए दुख हौ मैं विचों गवाए। सतगुर सेवन अपना हौ तिन कै लागो पाए। नानक दर सच्चै सच्यार है हौ तिन बलिहारे जाओ। श्री राग महला तीजा। जे वेला वक्त विचारिए ता कित वेला पगत।

मन तन शीतल सास स्यों सास न बिरथा तोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए साची भगत तासी है जा हर वसे मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है सच नाम बीज पा।

विण कर्मा पाया ना जाए, पूरे पाग सत्संगत लहे, सतगुर पेटे जिसे आए, अंधन नामे रत्या दुख बिखिया विच्चों जाए, नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए। श्री राग महला तीजा। अपना पाओ तिन पायोन जिन गुरु का शब्द विचार, सत्संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार, दुबदा मैल चुकायन हर राखिया उरदार, सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार, मन मेरे हों मैं मैल पर नाल, हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारण हार, रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया, प्रभ आपे लय मिलाए, अंधन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए, ज्योति हु प्रभ जापदा बिन सतगुरु बूझ न पाए, जिनको पूरब लिखिया सतगुरु पेटिया तिन आए, विण नावे सब डुमणी दूजे पाए खुआए, तिस बिन कड़ी ना जीवदी दुखी रहन विहाए, परम पुलाना अंदुला।

पचाए। सो प्रभ नदर ना आवई मन मुख बूझ ना पाए, जिस वेखा ले सोई वेखे नानक गुरमुख पाए। श्री राग महला तीजा, बिन गुर रोग ना टुटे हो मैं पीड़ ना जाए, गुर प्रसादी मन वसे नामे रह समाए, गुर शब्दी हर पाई है।

गुर शब्दी मन रंगिया रसना प्रेम प्यार बिन सतगुर किने न पायो कर वेखो मन विचार मन मुख मैल न उतरे जिचर गुर शब्द ना करे प्यार मन मेरे सतगुर के पाने चल निज कर वसे अमृत पीवे ता सुख लह महल रहाओ अवगुणवंती गुण को नहीं बैन न मिले हदूर मन मुख शब्द ना जाने अवगुण सो प्रभ दूर जिन्नी सच पछाणिया सच रते भरपूर गुर शब्दी मन वेदिया प्रभ मिलिया आप हदूर आपे रंगन रंगियोन शब्दे लयोन मिलाए सच्चा रंग ना उतरे जो सच रते लिवलाए चारे कुंडा पाव थके मन मुख बूझ न पाए जिस सतगुर मेले सो मिले सच्चे शब्द समाए मित्र कनेरे कर थकी मेरा दुख काटे कोए मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए सच मिले से ना विछड़े नानक गुरमुख होए।

अपना हौ कै दर पूछो जाए। सतगुर सेवी पाओ कर मैं फिर देहो मिलाए। सब उपाय आपे वेखे किस नेड़े किस दूर। जिन फिर संगे जानिया फिर रावे सदा हदूर। मुंदे तू चल गुर कै पाए अंदिन रावे फिर अपना सहजे सच समाए। रहाओ शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिगार। हर वर पायन कर अपने गुर कै हेत प्यार। सेज सुहावी हर रंग रवे भगत परे पंडार। सो प्रभ प्रीतम मन वसे जे सबसे दे आधार। फिर सालाहन अपना तिनके हो सद बलिहारे।

गुरमती नाम सलाही है, दूजा अवर न कोई रहाओ। धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार। तिनकी सेवा धर्म राय करे, तन सवारण हार। मन के विकार मनह तजे, मन चूके मोह अभिमान। आत्म राम पछाणिया, सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाये, मन मुख फिरे दीवान। शब्द नाची ने कथनी बदनी करे, बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है, दूजा अवर ना कोए। ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। नानक नाम समाल तू, जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा। जग हो मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाए। मल हो मैं तोती किवे ना उतरे, जे सो तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमा

गुर शरण आवे ता निर्मल होए, मन मुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए, मन मुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजा।

नानक नाम ना विसरै सच्चे माए समाओ। श्री राग महला चौथा कर पहला, मैं मन तन बिरहो अत अगला, क्यों प्रीतम मिले कर आए, जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखे दुख जाए, जाए पुछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मिलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवरना कोए, हम मूरख मुगत शरणागति कर कृपा मेले हर सोए। रहाओ सतगुर दाता हर नाम का प्रभ आप मिलावे सोए, सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जेवड अवरना कोए, हाँ गुर शरणाई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए।

कूड कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास प्रभ, तुद्दो खाली को नहीं दर गुरमुखा नो सावास, बिख पौजल डुब दे कड ले जन नानक की अरदास। श्री राग महला चौथा। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणतास, हों तिस विट्टो चौखनी है मैं नाम करे प्रगास, मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ते आए, बिन नामे जीवन ना थी है, मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए, रहाओ नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवे लग्या कड रतन देवे प्रगास, तन वड पागिया जो आए मिले गुरपास, जिना सतगुरु पुरख ना पेट्यो से पागहीन बस काल, ओए फिर जोन पवाइए विच विस्ता कर विकराल, ओना पास दुआस ना पिटिए जिन अंसर क्रोध चंडाल, सतगुरु पुरख अमृत सर वड पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की निवलाए। श्री राग महला चौथा। गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए, गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाए, हीरे हीर मिल बेदिया रंग चलू लेनाए, मेरे गोविंदा गुण गावा त्रिपत मन होए, अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावे सोए, रहाओ मन रंगो वड पागियो गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो हों सतगुर के बल जाओ, बिन सतगुर हर नाम न लब्बई लख कोटि कर्म कमाओ, बिन पागा सतगुर ना मिले कर बैठिया निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख परम है विच पड़दा दूर पयास, बिन सतगुर पेटे कंचन नासी है मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास, सतगुर बोहित हर नाम है कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर के पाने जो चले विच बोहित बैठा आए, तन तन वड पागी नानका जिना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा। हों पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे।

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बैरोए जो हर प्रभ पाना सोचिया तुर लिखिया ना मेटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जले समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत पला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभु आए ओए वे परवा ना बोलनी हौ मल मल तो वा तिन पाए पाई रे मिर सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुरु पुरख है दुख कड्डे हौ मैं मार रहाओ गुरुमुखिया सुहागणी तिन दया पई मन आए सतगुरु वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए सेवड पागी वड जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वन तिन सबत है पाग ही नहीं खाए बिन सतगुरु पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिल लाए ओए सतगुरु आगे ना निवे ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़े फिर आथवे रैन सवाई जाए आव कटे नर न बुझे नित मूसा लाज चुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचे पचाए पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई न होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दर गए मनिए हर आप ले गल लाए गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद तुनी दर वजदे दर सच्चे सोबा पाए जिनी गुरमुख नाम सलाया तिना सब को कहे सवा।

रस भोगें खुशिया करें माने रंग अपार बोस करें फुरमाइसी वरते हुए अफार करता चितना आवई मनमुख अंधगवार मेरे मन सुखदाता हर सोए गुर प्रसादी पाये कर्म प्राप्त होए रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अखाक किसी चित न पावही।

सोसन तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन की मत तिन प्रभु आप पुलाया ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राज महला पंजवा मन बिलास बहु रंकना दृष्ट पूल खुशिया छत्र तार बादशाहियां विच सहसे परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थान सनंतरा तेते पव आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया सबको वसगत कर लेन बिन नावे खाक रलिया कोट तेपी सेवका सिद्ध साधक दर खरिया गिरमबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया श्री राज महला पंजवा पलके उठ पपोलिए बिन बुझे मुगद अजान सो प्रभ चित न आयो।

ते चाक चखाया चौथे पोर पया तद ही चित ना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिसते सोजी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान। श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसरना जाओ तंदा सब जलाए कै।

बात जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वह मत मेरे मन एकस्यों चित लाए एकस बिन सब तंद है।

जपना आठ पहर प्रभ त्याय तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवर न कोए जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पै पंजनो।

त्याग उपाव स्यानप सगल छड़ गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो मैं ताप नानक कहो गुर पेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का इको रखनहार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस शरणाई सदा सुख पार गम करतार मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा आराध नित इकस की लिव लाग रहाओ इको पाई मित इक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनो न विसरे जिन सब किछ वस कीता कर इको बाहर इको थान सनंतर आप जी जंत सब जिन

जिना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान। जिनको आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम। मन मेरे एको नाम से आए

काल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल। थान थान अंतर रव रया।

मेरे मन गुर सबदी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोए। रहाओ मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान, अंतर जामी सदा संग करने हार पछान। गुर प्रसादी मुख उजला, जप नाम दान स्नान, काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभिमान। पाया लाहा लाभ नाम पूरन होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेरवान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हालत पलत मुख उजने साचे के गुण।

हो वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर है सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा।

हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद। जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद। नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवां। प्रीत लगी तिस सच स्यों मरे ना आवे जाए। ना वे छोड़िया विछड़े सब मैं रहा समाए। दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए। अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए। पाई रे मीत करो प्रभ सोए। माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसे कोए रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार। सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार। बालक बिरद ना जानिए।

हिरै मन तन होवे शांत, एक मन एक त्याय मन की लाए भरांत। गुण निधान नव तन सदा पूरन जाकी दात, सदा सदा आराधी है दिन विसरो नहीं रात। जिनको पूरब लिखिया तिनका सखा गोविंद, तन मन तन अर्पी सबो सगल वारी है एह जिंद। देखे सुने हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद, अकिर्त कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा, मन तन तन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार, सर्व कला कर था प्या अंतर ज्योत अपार। सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रख उधार, मेरे मन हर बिन अवर न कोय, प्रभ शरणाई सदा रहो दुख ना व्यापे कोय। रहाओ रतन पदार्थ।

मनमुख पस ना पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भगती नाम विहुणिया आवे मंजे पूर राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय न वसई कारज किते न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुरचरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग कारज सब सवारी है।

जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ, करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ, मार आपे

बिन हर नाम न सुख होए, कर डिठे विस्तार सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार। तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर, लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर। थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा भरपूर, सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान। सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान, नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। उद्दम कर हर जापना वड पागी तन खाट, संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट। मन मेरे राम नाम जप जाप, मन इच्छे फल पुंच तू। सब चूके सोग संताप रहाओ जिस कारण, तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल। जल थल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नजर निहाल। मन तन निर्मल होया लागी साच परीत, चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत। रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ, सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ। श्री राग महला पंजवा। सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ, चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ। साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ, कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवन जाओ। मेरे मन हर पज सदा एक रंग, कट कट अंतर रव रहा सदा सहाई संग रहाओ। सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद, जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओह रस जाने जिंद। संता संगत मन वसै प्रभ प्रीतम बख्शिंद, जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद। अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान, रसना उचरे गुणवती कोई न पुजे दान। दृष्ट तार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरवान, जियो पिंड तन तिसदा हो सदा सदा कुर्बान। मिलिया कदे ना विछड़े जो मेलिया करतार, दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनहार। पूला मार्ग पायन गुण अवगुण ना विचार, नानक तिस शरणागति जे सगल कटा आधार। श्री राग महला पंजवा। रसना सच्चा सिमरिए मन तन निर्मल होए, मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए। मेर करे जे आपनी चसा न विसरे सोए, मन मेरे साचा सेव जिचर सास। बिन सच्चे सब कूड़ है अंते होए विनाश रहाओ। साहिब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए, मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार। सतगुरु दाता नाम का पूरा जिस भंडार, सदा सदा सालाही है अंत न पारावार। परवदगार सालाही है जिस दे चलत अनेक, सदा सदा आराधी है एहा मत विशेख। मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख। श्री राग महला पंजवा। संत जनों मिल पाइयो सच्चा नाम समाल, तोसा बंदो जी का एथे ओथे नाल। गुरपूरे ते पाइए अपनी नदर निहाल, करम प्राप्त तिस होवे जिसनो होए दयाल। मेरे मन गुर जेवड अवर न कोए, दूजा छाओ ना कोस जै गुर मेले सच सोए रहाओ। सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर सब में रहा समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म।

प्रभात। क्या तू रत्ता ग्रस्त स्यों सब फुला की बागात, मेरी मेरी क्या करें जिन दिया सो प्रभलोड, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख चौरासी भरमत्या दुलब जन्म पाए हुए, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आए हुए।

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब का हाथ जा उठी चलसी कंकड़ा ता कोई ना पूछे तेरी बात। पेयरण सौ सेव तू सौरण सुख वस गुरमिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सौरै वंजना सब मुकलावन हार नानक तन सुहा।

जाओ, दुख कलेश ना पाओ व्यापे, गुरुमंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुरबिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधारण है, पाप सगले जाहे, हौं तिनके बलिहारणे जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसे साच हर का नाओ, सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा। संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारया हर सिमर होए उधार। जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार। सत संतोख दया कमावे ए करनी सार, आप छोड़ सब होए रीणा जिस दे प्रभ निरंकार। जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार, कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा। दुखरित सुकृत मंदे संसार सगलाना, दोहू ते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना, क्या कहो सुनो स्वामी तू वड़ पुरख सुजाना। रहाओ मान अभिमान मंदे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संतो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहो कीरत करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गत अविगत कछ नजर ना आया।

पहला संत जना मिल पाया कटेड़ा जमकाल सच्चा साहिब मन मुठा हुआ खसम दयाल पूरा सतगुर पेटिया बिनसिया सब जंजाल मेरे सतगुरा हों तुद विटो कुर्बान तेरे दर्शन को बलिहारने तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेविया पाओ कर सही पुरख सुजान तिना पिछे छुटी है जिन अंदर नाम निदान गुरजे वरदाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुभाए सच्चे सेती रतिया दरगह बैसन जाए करते हथ वडियाइया पूरब लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्व निरंतर रव रहा जप नानक जीव है एक श्री राग महला पंजवा गुर परमेश्वर पूजिए संतन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब चार मेरे साजन हर हर नाम समाल साधु संगत मन वसे पूरन हो वै काल रहाओ गुर समरथ अपार गुर वड पागी दर्शन होए गुर अगोचर निर्मला गुर जेवन अवर न कोय गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा पूरन हार गुरदाता हर नाम दे उदरे सब संसार गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार जितड़े फल मन बाछिए तितड़े सतगुर पास पूरब लिखे पावने साच नाम दे रास सतगुर सरणी आया बहुड़ नाही बिनास हर नानक कदे ना विसरो एहो जियो पिंड तेरा साथ श्री राग महला पंजवा संत जनो सुन पाई हो छूटन सा चैन आए गुर के चरण सरेवणे तीरथ हर का नाम आगे दरगह मनिए।

रहाओ। सतगुरु विटो वारिया जिन दिता सच नाओ, अंदिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, गुरजेवड अवर ना दिसई आठ पहर तिस जाप, नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतास, गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूरब लिखिया से ही नाम ते आए, नानक गुर शरणागति मरे ना आवे जाए।

पाखंड प्रेम ना पाईए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार। रहाओ गुर सबदी सिगारिया, तन मन फिर कै पास, दोए कर जोड़ खड़ी तकै।

लाली माने नाओ साची प्रीत ना टुटई साचे मेल मिलाओ शब्द रती मन वेदिया हो सद बलिहारे जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुरु माए समाए फिर रिसालू नौतनो साचो मरे न जाए नित रवे सुहागणी साची नजर जाए साच तड़ी तन मांडिये कापड़ प्रेम सिगार चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख न जाने साचे गुर कै हेत प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कंक

को पूछो जाए, सतगुर मेली पैवसी नानक प्रेम सखाए। श्री राग महला पहला, आपे गुण आपे कथे, आपे सुन विचार, आपे रतन परख तू, आपे मोल अपार, साचो मन महत तू, आपे देवनहार, हर जियो तू करता करतार, ज्यों पावे त्यों राख तू, हर नाम मिले आचार, रहाओ आपे हीरा निर्मला, आपे रंग मजीठ, आपे मोती उजलो, आपे भगत बसीठ, गुर कै शब्द सलाहना, कट कट डीठ अडीठ, आपे सागर बोहे था, आपे पार अपार, साची वाट सुजान तू।

त्यों मानसा पवे अचिंता जाल रहाओ। सब जग बादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हौ तिनके बलिहारण दर सच्चे सच्यार, सीचाने ज्यो पंखिया जाली बद्दक हाथ। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुटिए कोई न संगी साथ।

मुख झूठ है झूठ बोलना क्यों कर सूचा होए। बिन अब शब्द न मांझिए साचे ते सच होए। मुंदे गुणहीनी सुख के है पिर रलिया रस मानसी साच शब्द सुख ने है। रहाओ पिर परदेसी जेसी है तन वांडी चूरे। ज्यो जल छोड़े मछली करण पलाव करे फिर पावे सुख पाईए जा आपे नदर करे। फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल। सबत सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल कामन काम ना आवे खोटी अवगणियार। ना सुख पेई है सौरे झूठ जली बेकार आवन।

अवगण त्याग समाई है, गुरमत पूरा सोए रहाओ। विन राशि वापारिया तके कुंडाचार, मूल न बुझे अपना वस्त रही कारबार। विन वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ियार, लाहा एनस नौतना परखे रतन विचार। वस्त लह कर अपने चले कारज सार, वन जा रहा स्यो वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार। संता संगत पाई है जे मेले मेलनहार, मिलिया होए ना विछुड़े जिस अंतर जोत अपार।

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाये सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूगर जाओ। बन में पूली जे फिरा बिन गुर बूझना।

रहाओ। गुरुमत पद सावा तिस तिस के संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवो बिन नावे मर जाओ। मैं अंधले नाम ना विसरे टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधुला चेले नाही ठाओ, बिन सतगुरु नाव ना पाये बिन नावे क्या सुआओ। आए गया पछतावना ज्यो सुन्ने कर काओ, बिन नावे दुख देहोरी ज्यो कलर की पीत। तब लग महल न पाइए जब लग साच न चीत, शब्द रपे कर पाइए निर्बाणी पदनीत। हों गुर पूछो आपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हों मैं दुख जल जाओ। सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ, शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार। नाम सलाहन सद सदा हर राखे उर्धार, सो क्यों मनो विसारिय सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार, शब्द ही ते पाये हर नामे लगे प्यार। बिन शब्द जग पूला फिरे मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको वढ़ो वडेरी होए, गुर बिन आप ना चीनिए कहे सुने क्या होए। नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे न कोई। श्री राग महला पहला। बिन फिर तन सिगारिए जोबन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी बिन फिर बाद सिगार। दुख कणो दोहागणी ना कर सेज पतार, मन रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम ना पाइए शब्द मिले रंग होए। रहाओ गुर सेवा सुख पाइए हर वर सह सिंगार। सच माने फिर सेजड़ी गूड़ा हे प्यार, गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुणचार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साच विकसिया कीमत कह न जाए। हर वर कर सुहागणी निर्मल साचे नाए। मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार, इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार। संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार, खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए। शब्द पछाणे रव रहे ना तिस काल संताए। साहिब अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए, वापारी बन जा रहा।

ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाईए बिन हर भगत प्यार नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरि आवला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार पवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नामे तन बाद है पूलो मार गयाथ साचो साहिब।

जल मरण तिनेह। मन रे क्यों छूटे दिन प्यार, गुरुमुख अंतर रल रहा, बख्शे भगत पंडार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसी मछली नीर, ज्यों अधिको त्यों सुख।

नाम वदाई जो मिले सत रपे पत होए जो तुद पावे से पले खोटा करा न कोए गुर शरणाई छुटिए मन खोटी रास अष्ट तात पाप साकी करिए सब

जिन तन मन साज सुधारिया तिस सेती निवलाए रहाओ। तन दै संतर होमी है इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंदिन अगन जलाए। हर नाम है तुल न पुजई जे लख कोटी कर्म कमाए। अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए, तन है मंचल गालिए ती मन के रोग न जाए। हर नाम है तुल न पुजई सब जिथी ठोक बजाए, कंचन के कोट बत करी

सबको ऊंचा आखी है नीच ना दूसे कोई। इतने पांडे साजे है इक चानन के होलोए। कर्म मिले सच पाई है थुर बस ना मेटे कोई। साधु मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए। अकथ कथा विचारी है जो सतगुर माहि समाए। ई अमृत संतोखिया दरगह पैदा जाए। कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए। विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए। नान

ऊंचो पर्वत गाथड़ो ना पौड़ी तित पास, गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास। पाई रे पावजल बिखम डराओ, पूरा सतगुर रस मिले गुर।

गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक करिए सच नाम सिर साहा पाप चाहो मैं हर नाम ना।

गुरुमुख कृपा करे भगत की जय, बिन गुरु भगत न होए। आपे आप मिलाए बूझे, ता निर्मल होवे कोई। हर जियो सच्चा।

बिन सतगुरु को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं बसया अंत गया पछताई। तेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अंग दिन भगत करें दिन राती हों मैं मोह चुकाया। जिस यो राता तैसो होवे सच्चे सच समाया, आपे नदर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार। सतगुर सेवे सहज उपजे हों मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उद्धार। प्रभु मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे हो मैं दुख सब जाए। सतगुर शब्द सुनाया हो सद बलिहार जाऊं, अपने मन चित कहे कहाए दिन गुर आप ना जाए। हर जियो भगत वचन सुख दाता कर कृपा मन वसाई, नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वल्याई। श्री राग महला तीजा, हो मैं कर्म कमाव दे जम दंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए। मन रे गुरमुख नाम ते आए, तुर पूरब करते लिखिया किना गुरमत नाम समाए। रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई, नाम ना लागो पाओ सुपने सुख ना पावई, दुख में सवे समाए। जे हर हर की चै बहुत लोची है किर्त नाम ते आ जाए। हर का पाना भगती मन्या से भगत पे दर खाए, गुर शब्द दिलावे रंग स्यों बिन कृपा ले आना जाए। जो सो अमृत नीरी है पी दिख फल लागे ताए, से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुरु नाल प्यार। सतगुरु का पाना

चरम पर आपत होए। श्री राग महला तीजा पंखी दीर्घ सुहावना सच चुग गए गुरु पा।

ना अमृत फल पाए। गुरुमुख ब्रह्म हरियावला साचे सह सुवाए, साखा तीन निवारिया एक शब्द निवलाए। अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मन मुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास ना बहती है ओना कर ना गिराओ। कटिया तै नित जालिए ओना शब्द ना।

हुकम ना जाने बपुड़े पूले सिरे गवार मन हज कर्म कमाउंदे नित नित होए कुआर अंतर सांस न आवई ना सच लगे प्यार गुरमुखिया मोह सोने गुर के हेत प्यार सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार आए से परवान।

नानक नाम वडाइया करम प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा। गुरुमुख नाम से आये मन मुख बूझ न पाए, गुरुमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही सुख पाये सहजे रह समाए, पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भगत है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुरु भाए, सदा फिर निंचल पाये ना ओ मरे न जाए। शब्द मिली ना बिछड़े फिर कै अंक समाए, हर निर्मल अप उजला बिन गुर पाया न जाए। पाठ पड़े ना बूझई तेथी परम पुलाए, गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुवाए,

बिन शब्द परम न चूके न विच्चों हो मैं जाए। बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द छाए न पाए। शब्दे हो मैं मारिये माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाये गुरमुख सह सुवाए। बिन गुर गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए। भगत वत्सल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्द हर्षा लाहिए कर्म प्राप्त होए। श्री राज महला की जा माया मोह मेरे प्रभ कीना आपे परम पुलाए। मन मुख कर्म करें।

गुरपुरा साला ही है, सहज मिले प्रभ सोए रहाओ, परम गया पौ पा गया हर चरणी चित लाए, गुरमुख शब्द कमाए हर वसे मन आए, कर महल सच समाये, जम काल न सके।

रंग राता प्रभ नित तपस्या सबना कट अंतर गुरमुख वीर ले जाता नानक नाम मिले वडियाई गुर के शब्द पछाता श्री राग।

सदा सदा सहज समाद लगाए, सहजे ही गुण उचरे भगत करे लिव लाए, सबदे ही हर मन वसे रसना हर रस खाए, सहजे काल विदारिया सच शरणाई पाए, सहजे हर नाम मन वसिया सच्ची कार कमाए, सिर वडपाजी जिन्नी पाया सहजे रहे समाए, माया विच सहज ना उपजे माया दूजे भाए, मन मुख कर्म कमाए।

श्री राज महला तीजा। सतगुरु मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाए, पूरे शब्द सब सोजी होई हर नामे रह समाए। मन मेरे सतगुरु से चित लाए, निर्मल नाम सद नवतनो आप वसे मन आए। रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई, ज्यो राखे त्यो रहना। गुरु कह सबद जीवत मरे, गुरमुख पव जल तरना। वड्डे पाग नाउ पाईए, गुरमुख सबद सुहाई। आपके मन वस्या प्रभ करता, सहजे रहा समाई। इतना मनमुख शब्द न पावे, बंधन बंद पवाया। लक्ष्यो राशि फिर आवे, दिशा जन्म गवाया। पगता मन आनंद है, सच्चे शब्द रंग राते। अंगिन गुण गावे सद निर्मल, सहजे नाम समाते। गुरुमुख अमृत बाणी बोले, सब आत्म राम पछाणी। एक को सेवन एक आराधे, गुरुमुख अकथ कहानी। सच्चा साहिब सेवी है, गुरुमुख वसे मन आए।

सतगुरु जिनी ना सेवेओ सेवित आए संसार जम दर्ब दे मारिए फूक न सुने पुकार बिरखा जन्म गवाया मर जम्मे वारो वार एहो जग जलता देख के पज पै सतगुर शरणा सतगुर सत दिलाया सदा सत संजम रहना सतगुर सच्चा है बोहिखा सबदे पवजन करना लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त न होई पर पंडित मोनी थके।

उचरे तपे तपीशर जोगिया तीर्थ गमन करे खट कर्मा के दुगने पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलक सिकदारिया रस ओगन विस्तार बाग सुहावे सोने चले हुक्म अपार रंग तमाशे बहुविधि चाहे लग रहा चितना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाद अचार वंत शोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पा

एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही जाता काट ना सिन ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो पगता, सगल उकत उपावा त्याग शरण पावा, नानक गुरचरण।

हा पाप सा सिर खसम तू जप नानक जी वै नाओ जियो तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वर्तदा जिस पावे किसे बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे ने समाए जियो गोपी ने गो

لگا پائے جیو سن گلاں گر کہ آیا نامدان اس نام دڑایا

तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा नामर जाद आया कल पीतर बाहुर जासी नागा जैसी कलम बुड़ी है मस्तक तैसी जीड़े पास कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुकुम पया गरबास दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हखो हथ नचाए वन जा रहा मित्रा ज्यो जसदा कर कान हखो हथ नचाए प्राणी माप कहे सुत मेरा चेत अचेत मूर मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया तिसे न जाने मन भीतर कर ज्ञान कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा तन जोबन स्यो चित हर का नाम न चेत ही बन जा रहा मित्रा बद्दा छुटे जित हर का नाम न चेते प्राणी विकल पया संग माया तन स्यो रता जोबन मता अहला जन्म गवाया धर्म से की वापार ना की तो कर्म ना की तो मित कहो नानक की जय पहरे प्राणी तन जोबन स्यो चित चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा लावी आया खेत जा जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा किसे न मिलिया पेट पेट चेत हर किसे न मिलियो जा जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दो आले खिन में पया पराया साई वक्त प्राप्त हो।

ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही जन्म मरोगे झूठे। तीरथ वर्त सुच संयम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तार।

जोबन कटे जरुआ जिने बन जा मित्रा आव कटे दिन जाए। अंत काल पछतासी अंगले जा जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया कराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी कीजै पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा बिरद पया तनखीन अखी अंध न दिसई बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने न वैन। अखी अंध जीव रस नाही रहे परातो ताना गुण अंतर नाही।

हर त्यावै हर उचरै मन जा रिया मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपे आराधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म पया।

मेरा मेरा कर पाली है वन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा दित्ते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन

पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा सब चली रहन विहां दी हर सेवो खिन खिन टिल मूल न करहो जित अस्थिर जुग जुग होवो हर सेती सद मानो रलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सतगुर स्वामी भेद न जानो जित मिल

कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया, मात पिता पाई सुख बनता तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म सो कर्म कराए आपे इस जंग

गुरुमुख नाम ते आया। हर पुरुख ना कभी बिन सै जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको, जप हर

मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम समाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर निभे तेरे नाले। संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई न जाए। मन सिंदे से ही फल पावे चरण कमल चितलाए। जल थल पूर रहा बनवारी कट कट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर दिन झूठ पसारे। मन प्यारिया जी

गुरपुरा पे टैवड पागी आठ पहर प्रभ जापे। आप जुगादी सेवक स्वामी पगता नाम आधारे, नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे।

मा फिरी पसे क्यों दीदार संत शरणाई लबने नानक प्राण आधार संत चरण कमल सुप्रीत रीत।

मिलियो हो, आपे ही आप मोहे हो, जस नानक आप सुनियो हो, संत प्रेम खगौरी पायरी जाए, गोविंद मन मोहया जियो, संतन के प्रसाद अगाध कंठे लग सोया जियो, हर कंठ लग सोया, दोख सब जोया, भगत लखन कर वस भये, मन सर्व सुख उठे, गोविंद तुठे, जन्म मरना सब मिट गए, सखी मंगलो गाया, इच्छ पुजाया, बहुर न माया होया, कर गैली ने नानक प्रभ प्यारे, संसार सागर नहीं पोया, दखना साईं नाम अमो

नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए। गुरमस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए। मन हर हर प्रीत लगाए वडपागी गुर पाया गुर सब्जी पार लगाए। रहाओ हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन प्रगास है से विरले के ही के। हों बलिहारी तिन को जिन हर पाया गुरमते जन नानक कमल प्रगासिया। मन हर हर उठड़ा है मन हर हर जपन करे हर गुर शरणाई पद पो जिंदु सब किलिक दुख पर हरे। रहाओ कट कट मैया मन वसे क्यों पाये कित पत गुर पूरा सतगुर पेटिये हर आए वसे मन चित। मैं तार नाम आधार है हर नाम में ते गत मत मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम तिराया रंग रतड़ा हर रंग रत हर त्यावो हर प्रभ सत गुरु बचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वणज व्यापारिया जिन वखर लगेड़ा हर रास गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया जिना आप तुथा गुणतास हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी।

आपो जे को भला कहाए, नानक ता पर जापे जा पत लेखे पाए। महला दूजा, जिस प्यारे सोने हो तिस आगे मर चलिए।

मन कर मकसूद जे तिर देखा ते तिर मौजूद महला तीजा गुरसवा एव ना पाईए ना नेड़े ना दूर नानक सतगुर ता मिले जा मन रह हदूर पौड़ी सपत दीप सपत सागरा नवखंड चार वेद दस अष्ट पुराणा हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाणा सब तुझै ते आवे जी जंत हर सारग पाणा जो गुरमुख हर आराध दे तिन्हो कुर्बाना तू आपे आप वरतदा कर चोज विडाणा श्लोक महला तीजा कलो मसाजनी क्या सदाये हृदय ही लिख ले हो सदा साहिब के रंग रहे कबू न टूटसने हो कलो मसाजनी जायसी लिखिया भी ना ले जाए नानक सह प्रीत।

मेरे मन हर चेत सो डरे जे पाप कमावदा तरमी विगसेत तू सच्चा आप न्याओ सच ता डरिए केत जिना नानक सच पछान।

लिखन वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूरब लिखिया कमावना अवरना करना जाए महला तीजा होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नामे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हो एक वार पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जां न्याओ है धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जां फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जां ना सुनई कहा चुगल का हर की वड्याई

पौड़ी। शिष्ट उपाय सब तुद आपे रिजक समाया, एक वल छल करके खाम दे मुंह कूड़ कुसत तिन्नी ताया। तुद आपे पावे सो करें, तुद ओते कम कोय लाया। इकना सच बुझायन तिना अतुट भंडार देवाया। हर चेत खाहे तिना सफल है, अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा। पर पढ़ पंडित वेद बखाने, माया मोह सुआए। दूजे पाए हर नाम विसारिया, मन मूरख मिले सजाए। जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते, जो देंदा रिजक समाहे। जम का पाथा गलो न कटिए, फिर आवे जाए। मन मुख किछु न सूजे, अंगले पूरब लिखिया कमाए। पूरे पाग सतगुर मिले, सुखदाता नाम वसे मन आए। सुख माने सुख पहनना, सुखे सुख विहाए। नान सो ना मनो ना विसारिये, जित दर सच्चे शोभा पाए। महला तीजा। सतगुर सेव सुख पाया, सच नाम गुण तास। गुरमति आप पछाणिया, राम नाम प्रगास। सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास। जियो पिंड सब तिस्ता सिफत करे अरदास। सच्चे सबद सलाहना, सुखे सुख निवास। जप तप संजम मने माहे, बिन नावे त्रिग जीवास। गुरमति नाव पाईए, मन मुख मोह विनाश। ज्यो पावे त्यो रास तू, नानक तेरा दास। पौड़ी। सब को तेरा तू सब सदा, तू सबना रास। सब तू दे पासो मंग दे, नित कर अरदास। जिस तू दे तिस सब किछ, मिले इकना दूर है पास। तुद बाजो थाओ को नाही, जिस पासो मंगिए मन वेखो को निर्जास। सब तुदे नो सलाह दे, दर गुरुमुखा नो प्रगास। श्लोक महला तीजा। पंडित पढ़ पढ़ उच्चा फूकदा, माया मोह प्यार। अंतर ब्रह्म न चीनई, मन मूरख दावार। दूजे पाए जगत प्रबोध दा, न बुझे विचार। बिरथा जन्म गवाया, मर जम्मे वारो वार। महला तीजा। जिन्नी सतगुर सेविया, तिन्नी नाव पाया बूझो कर विचार। सदा सांत सुख मन वसे, चूके कूक पुकार। आपे नो आप खाए मन, निर्मल होवे गुर सबदी विचार। नानक सबद रते से मुक्त है, हर जियो हेत प्यार। पौड़ी। हर की सेवा सफल है, गुरमुख पावे ताए। जिस हर पावे तिस गुर मिले, सो हर नाम त्याए। गुर सबदी हर पाए, हर पार लगाए। मन हट किने न पायो, पुछो वेदा जाए। नानक हर की सेवा सो करे, जिस लय हर लाए। श्लोक महला तीजा। नानक सो सूरा वरियाम, जिन विच्चों दुष्ट अंकरण मारिया। गुरुमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया। आप होवा सदा मुक्त, सब कुल निस्तारिया। सोहन सच द्वार नाम प्यारिया। मन मुख मरे अंकार, मरण बिगारिया। सबो वर्तै हुकुम, क्या करें विचारिया। आपो दूजे लग खसम विसारिया। नानक बिन नावे सब दुख सुख विसारिया। महला तीजा। गुरपूरे हर नाम दिलाया, तिन विच्चों परम चुकाया। राम नाम हर कीरत गाई, कर चावन मद दिखाया। होमे मार एक लिव लागी, अंतर नाम बसाया। गुरमति जम जोहे न साके, साके नाम समाया। सब आपे आप वर्तै करता, जो पावे सो नाई लाया। जन नानक नाम ले ता जीवे, बिन नामे खिन मर जाया। पौड़ी। जो मिलिया हर दीवान स्यों, सो सबनी दीवानी मिलिया। जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखरू, उसके मोह जिथे सब पापी तरिया। उस अंतर नाम निदान।

सो ऐसा हर नाम से आए मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय चढ़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा सब नामे अग्गे आन निवाए। श्लोक महला तीजा। वेस करे कुरूप कुलखणी मन फूटे कूड़ियार तिर के पाणे ना चले हुक्म करे गावार। गुर के पाणे जो चले सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को सब दे तरे प्यार। बिन नावे किने न पाया देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा। माया मोह गुवार है तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मन मुख अज्ञानी मां दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। पलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे पाए प्यार। सतगुर सेवे अपना पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावे सच नाम उरधार। पौड़ी। हर जल तल मैयल भरपूर दूजा नाहे कोए। हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए। सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख ली।

सुहागनी सतगुर के पाए प्यार, सदा रावे फिर अपना सच्चे प्रेम प्यार। अत सुआल्यो सुंदरी शोभावंती नार, नानक नाम सुहागनी मेली मेलनहार। पौड़ी हर तेरी सब करे उस्तत जिन फाफे काढ़िया, हर तुदनो करे सब नमस्कार जिन पापे ते राखिया। हर निमाणिया तू मान, हर डाडी हूँ तू डाडिया, हर अंकारिया मार निवाए मनमुख मूड सादिया। हर पदता दे वड़ियाई गरीब अनाथिया। श्लोक महला तीजा, सतगुर के पाने जो चले तिस वड़ियाई वड़ी होए, हर का नाम उत्तम मन वसे मेट न सके कोए। कृपा करे जिस आपनी तिस कर्म प्राप्त होए, नानक कारण करते वस है गुरमुख बूझे कोए। महला तीजा, नानक हर नाम जिनी आराध्या अंदिन हर लिवतार, माया बंदी खत्म की तिन अगे कमावे कार। पूरे पूरा कर छोड़िया हुक्म सवारन हार, गुर प्रसादी जिन बुझिया तिन पाया मोख द्वार। मनमुख हुक्म ना जाननी तिन मारे जम जंदार, गुरमुख जिन्नी आराध्या तिन्नी तरिया पौ जल संसार। सब अवगण गुणी मिटाया गुर आपे बख्शन हार। पौड़ी हर की पगता प्रतीत हर सब किस जानदा, हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म विचारदा। कारा अंदेसा क्यों की जै जा नाही अतर्म मारदा, सच्चा

इतना को न जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर देखत ही जमराव हसे, ऐसा तैं जग परम लाया कैसे बूझे जब मोया है माया। रहाओ कह कबीर छोड़ बिखिया रस, इस संगत ने चो मरना। रमैया जपो प्राणी अनंत जीवन बाणी, इन विद पव सागर तरना। जात पावे ता लागे पाओ, परम पुलावा विच्चों जाए। उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। इत संगत नाही मरना, हुकम पछाण ता खसमे मिलना। रहाओ दूजा श्री राज त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा। प्राणी जरा मरण पौ विसर गया, कुटुंब देख बिगसे कमला ज्यों। पर कर जो है कपट नरा, दूरा आयो हो जमे तना। तिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे। मिल मेरे बीसला ले बाहरी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए। रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे, प्राणी संसार सागर पे अमर पया। माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया। बिखम कोर पंख चालना प्राणी, रव सत तहना परवेसं। माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले तर्म राओ। तह कर दल करन महाबली, तिन आग लड़े में रहन न जाए। जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिन रतड़ा नारायण। ऐ जी तू आपे सब किछ जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जीओ का। अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कह न जाए। सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखली लाए। राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी दिस्त नाद लिव लागे। रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश इक पाया। तिस में तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता। और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राजबाणी भगत बेणी जियो की, पहरियां कह कर।

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रसमित मेद अमृत बिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधया तरुण तेज परत्रय मुख जो है सर अफसर ना पछाणया उनमत काम महा बिख पूले पाप पुन ना पछाणया सुत संपत देख एव मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म विगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पताल की बाणी लोचन समय बुद्ध बल नाथी ता काम पवस माधानी ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे थाका तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना सुखाई बेनी कह सुनो रे भक्तो मरण मुकत किन पाई श्री राग तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटिक जल तरंग जैसा जो पे हम ना पाप करंता अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे हुंता रहाओ तुम जो नायक आछो अंतर

हर हर नाम में हर मन भाया, वडपागी हर नाम से आया, गुरपुरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चल जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले, गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया, हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई, हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर ना जाना, कोई सज्जन संत मिले वडपागी, मैं हर तक प्यारा दसे जियो। हों मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, हम बालक दीन करो प्रतिपाला, मेरा मात पिता गुरु सतगुरु पूरा, गुर जल मिल कमल विकसे जियो। मैं बिन गुरु देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे, हर हर दया करो।

कथा। हर गुण पढ़िए, हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए, मिल सत्संगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर मेल करेहा, मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा, मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरिए जियो। मेरी बेदन हर गुरु पूरा जाने, हाँ रह ना सका बिन नाम वखाने, मैं औखद मंत्र दीजे गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरिए जियो। हम चात्रिक दीन सतगुर शरणाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिए जियो। माज महला चौथा, हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पी जय जियो। मिल सत्संग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन भाणी, हर हर अमृत हर मन पावे, मिल सतगुर अमृत पी जय जियो। वड पागी हर संगत पावे, पागहीन प्रम चोटा खावे, बिन पागा सत्संग न लब्बे, बिन संगत मैल परी जय जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पी जय जियो। माज महला चौथा, हर गुरु ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौदा जियो। आवो संत मैं गल मेल आई है, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाई है, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौदा जियो। वड पागी हर संत मिलाया, गुरपूरे हर रस मुख पाया, पागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो। आप दयाल दया प्रवतारी, मल हो मैं बिख्या सब निवारी, नानक हट पट्टन विच काया, हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो। माज महला चौथा, हाँ गुण गोविंद हर नाम ते आई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो। तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाप मलोवा मल मल तोवा, मिल हर जन हर रस पी चै जियो। सतगुर दाते नाम दृढ़ाया, वड पागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुरपूरे अमृत लीचे जियो। हर सत्संगत सतपुरख मिलाइए, मिल सत्संगत हर नाम ते आइए, नानक हर कथा सुनी।

प्यारियां जो मेरा प्रीतम दसे तिसके हो वारियां मिल सत्संगत लद्दा हर सज्जन हो सतगुरु विट्टों कुमाइया जियो जै जै देखा तै तै स्वामी तू कट कट रविया अंतर जामी गुरपूरे हर नाल दिखा लिया हो सतगुरु विट्टों सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरते पिन पिन नार लई किसे दीर लाइया गुर प्रसादी इक नदरी आया हो सतगुरु विट्टों बताया जियो जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पानी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौक दे घर पहला मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिल्प करे चात्रिक की न्याई त्रिखा ना उतरे सांस ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सह तुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी पांच सौ देश जहां तू वस्या मेरे सज्जन बीत मुरारे जियो हों कोली हों कोल कुमाई गुर सज्जन बीत मुरारे जियो रहाओ इक कड़ी ना मिलते ता कल युग होता हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता मोहे रैन ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर में पाया सेव करी पल चसा ना बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद समाली सो कम सुहेला जो तेरी काली सो रिदा सुहेला जित रिदै तू उठा सबना के दातारा जियो तू सांझा साहिब बाप हमारा नौ निध तेरे अखुट पंडारा जिस तू दे सो त्रिपत अघावे सोई भगत तुम्हारा जियो सबको आसे तेरी बैठा कट कट अंतर तू है उठा सबे सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसे बहरा जियो तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाए नानक दास तेरे बलिहार है सब तेरा खेल दसहरा जियो माज महला पंजवा अनहद बाजे सहज सुहेला शब्द आनंद करे सद केला सहज गुफा में ता

आया तृप्त अगाए रहा है संतो गुर अनुभव पुरख दिखा रहा जियो। आपे राजन आपे लोगा आप निर्वाणी आपे पोगा आपे तख्त बह सच न्याई सब चूकी कूक पुकारिया जियो। जेहा डिठा मैं ते हो कहया तिस रस आया जिन भेद लया ज्योति ज्योत मिली सुख पाया जन नानक इक पसारिया जियो। माज महला पंजवा जित कर तिर सुहाग बनाया तित कर सखिए मंगल गाया आनंद विनोद तितै कर सो है जो तन कंत सिगारी जियो। सा गुणवंती सावड पागण पुत्रवंती सीलवंत सुहागण रूपवंत सा सुगड़ विचखण जो तन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई प्रधाने सब सिंगार बने तिस ज्ञाने सा कुलवंती सा सब राई जो फिर कह रंग सवारी जियो। महिमा तिसकी कह न जाए जो फिर मेल लई अंग लाए फिर सुहाग वर अगम गोचर जन नानक प्रेम सधारी जियो। माज महला पंजवा खोजत खोजत दर्शन चाहे पांत पांत बन बन अवगाहे निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है जियो आन मिलावे जियो। खट सासत विचरत मुख ज्ञाना पूजा तिलक तीरथ इसनाना निवली कर्म आसन चौरासी इनमें सांत ना आवे जियो। अनक बरख किए जप तापा गवन किया धरती परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवे जोगी बहुड़ बहुड़ उठतावे जियो। कर कृपा मोह साद मिलाया मन तन शीतल तीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावे जियो। माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावो गुरमुख गाती जियो। गुरमुख मधुसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाये होरत कित न पाती जियो। निरहारी केशव निर्वैरा कोट जना जाके पूजे पैरा गुरमुख हृदय जाके हर हर सोई भगत एकाती जियो। अमोघ दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दा तारा गुरमुख नाम जपिए तित तरिए गत नानक विरली जाती जियो। माज महला पंजवा कहया करना दिता लेना गरीबा अनाथा तेरा माना सब किछ तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत को बल जाई जियो। पाने उजड़ पाने राहा पाने हर गुण गुरमुख गावाहा पाने परम पवे बहु जूनी सब किछ तिसे रजाई जियो। ना को मूरख ना को स्याणा वरते सब किछ तेरा पाना अगम अगोचर बे अंत अथाहा तेरी कीमत कहन ना जाई जियो। खाक संतन की देहो प्यारे आए पया हर तेरे द्वारे दर्शन पेखत मन आघावे नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा दुख तदे जा विसर जावे उख व्यापे बहु विदतावे सिमरत नाम सदा सुहेला जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा जी संभाली ता सब दुख लथा चिंता रोग गई हौ पीड़ा आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ मंगा देन दे तोट नाही प्रभ रंगा पैरी पै पै बहुत मनाई दीन दयाल गोपाला जियो। हौ बलिहारी सतगुर पूरे जिन बंधन काटे सगले मेरे हृदय नाम

सो तृप्तावे, अमर होवे जो नाम रस पावे, नाम निधान तिसे प्राप्त, जिस शब्द गुरु मन उठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त अघाना, जिन हर साध पाया सो नाहे डुलाना, तिसे प्राप्त हर हर नामा, जिस मस्तक पागी था जियो। हर इकत हाथ आया वरसाने बहु तेरे, तिस लग मुक्त पय कनेरे, नाम निधाना गुरुमुख पाये, कहो नानक विरली डीठा जियो। माज महला पंजवा, निद सिद्ध रिद्ध हर हर हर मेरे, जन्म पदार्थ गैर गंभीर है, लाख कोट खुशियां रंग रावे, जो गुर लागा पाई जियो। दर्शन पेखत पय पुनीता, सगल उधारे पाई मीता, अगम अगोचर स्वामी अपना, गुर कृपा ते सच त्याई जियो। जां को खोजे सर्व उपाय, वड पागी दर्शन को विरला पाए, ऊंच अपार अगोचर थाना, ओ महल गुरु देखाई जियो। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त पया जिस हृदय वसेरा, गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो। माज महला पंजवा, प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो, उठक बैठक सोवत जागत, हर त्याय सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोको साधु दिया, किलबिख काटे निर्मल थिया, आनंद पया निकसी सब पीरा, सगल बिना से दर्दा जियो। जिसका अंग करे मेरा प्यारा, सो मुक्ता सागर संसारा, सत करे जिन गुरु पछाता, सो काहे को डरदा जियो। जब ते साधु संगत पाए, गुर पेटत हो गई बलाए, सास सास हर गावे नानक, सतगुर टाक लिया मेरा पड़दा जियो। माज महला पंजवा, ओत पोत सेवक संगराता, प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता, पानी पखा पीसो सेवक कै, ठाकुर ही का आहार जियो। काट सिलक प्रभ सेवा लाया, हुकम साहिब का सेवक मन पाया, सोई कमावे जो साहिब पावे, सेवक अंतर बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकुर सब विद जाने, ठाकुर के सेवक हर रंग माने, जो किछ ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। अपने ठाकुर जो पहराया, बहुर न लेखा पुछ बुलाया, तिस सेवक के नानक कुर्बानी, सो गहर गंभीरा गहर जियो। माज महला पंजवा, सब किछ कर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही, गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बार सुहेला जियो। चिम चिम वरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द बिचारा, अनद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर के लाजियो। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सूका हरिया, सुमत पाए नाम ते आए, गुरमुख होए मेला जियो। जल तरंग ज्यो जले समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया, कहो नानक प्रम कटे किवाड़ा, बहुर न होई है जौला जियो। माज महला पंजवा, तिस कुर्बानी जिन तू सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना पणिया, वार वार जाई तिस विटो, जो मन तन तुद आरा दे जियो। तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले, नैन निहाली तिस पुरख दयाले, मन देवा तिस अपने साजन, जिन गुर मिल सो प्रबला दे जियो। सेवड पागी जिन तुम जाने, सब के मदे अलिपत निर्बाणे, साध के संग उन पौजल तरिया, सगल दूत उन सा दे जियो। तिनकी शरण परया मन मेरा, मान पान तज मोह अंधेरा, नाम दान दीजे नानक को, तिस प्रभ अगम अगा दे जियो। माज महला पंजवा, तू पेड़ साख तेरी फूली,
तू सूखम होआ अस्थूली, तू जल निद तू फेन बुदबुदा, तुद बिन अवर न पालिय जियो। तू सूत मणिये भी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है, आद मद अंत प्रभ कोई अवर न कोई दिखा लिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुख दाता, तू निर्माण रसिया रंग राता, अपने कर सब आपे जाने आपे तुद संभालिए जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे, नानक दास सदा गुण गावे इक पोरी नदर निहालिए जियो। माज महला पंजवा, सफल सोबाणी जित नाम वखाणी, गुर प्रसाद किने विरले जानी, तन सोवेला जित हर गावत सुनना, आए ते परवाना जियो। से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा, से कर पले जिनी हर जस लेखा, से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, हौ बल तिन संग पछाणा जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, साध संग खिन माहे उदारे, किलविक काट हुआ मन निर्मल, मिट गए आवन जाना जियो। दो कर जोड़ एक बिनो करी जाए, कर कृपा दुबदा पत्थर ली जाए, नानक कहो प्रभ भय कृपाला, प्रभ नानक मन पाना जियो। माज महला पंजवा, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुरु का दर्शन पाए जियो। सुख पया दुख दूर पराना, संत रसन हर नाम वखाना, जल थल नीर परे सर सुबर, बिरथा कोई न जाए जियो। दया तारी तिन सिरजन हारे, जी जंत सगले प्रत पारे, मेहरवान कृपाल दयाला, सगले तृप्त अघाए जियो। वन त्रिण त्रिभवन की तोन हरिया, करण हार खिन पीतर करिया, गुरमुख नानक तिसे अरादे, मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदक तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, ताबो के आकारा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओत तू है मेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तुद उपाए, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किछ कीता तेरा होवे, नाही किछ असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया, गुरपूरे वजी वधाई, नानक जिता विखाड़ा जियो। माज महला पंजवा, जी प्राण प्रभ मने अधारा, भगत जीवे गुण गाए अपारा, गुण निधान अमृत हर नामा, हर त्याय त्याय सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मिटावे, आस मनोरथ पूरे होवे, पेटत गुर दर्शाया जियो। अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे ज्ञानी, खुद ही मिटी चूका पोलावा, गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, होए कृपाल स्वामी।

तू प्रीतम ठाकुर अतपारी तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो तुमरी ओट गोपाला जियो गुण गावत मन हरिया होवे कथा सुनत मल सगली खोवे पेटत संग साध संतन कै सदा जपो दयाला जियो प्रभ अपना साथ साथ समारो ए मत गुर प्रसाद मन पारो तुमरी कृपा ते होए परगाता सर्व मया प्रतपाला जियो सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा सद आपे होई।

सर्व जिया को देवन हारा, गुर प्रसादी नदर निहारा, जल थल मैयल सब तृप्ताने, साधु चरण पखाली जियो। मन की इच्छे पुजावन हारा, सदा सदा जाई बलिहारा, नानक दान किया दुख पंजन, रते रंग रसाली जियो। माज महला पंजवा, मन तन तेरा तन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, जियो पिंड सब रास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो। सदा सदा तू है सुखदाई, निव निव लागा तेरी पाई, कार कमावा जे तुझ पावा, जा तू दे दयाला जियो। प्रभ तुम ते लेना तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सहना, जिथे रखे बेकुंठ सिथाई, तू सबना के प्रतपाला जियो। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आठ पहर तेरे गुण गाया, सगल मनोरथ।

आया सांत पई बुझी सब कृष्णा आनंद पया सब थाई जियो सुख दाता दुख पंजन हारा आते बख्श करे जी सारा अपने की तेनो आप प्रतपाले तै पैरी तिसे मनाई जियो जाकी शरण पया गत पाये साफ साफ हर नाम ते आये तिस बिन होर न दूजा ठाकुर सब तिसे किया जाई जियो तेरा मान तान प्रभ तेरा तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा नानक दास कह बेनंती आठ पहर तुझ ते आई जियो माज महला पंजवा सबे सुख परे प्रभ तुठे गुरपूरे के चरण मन उठे सह समाज लगी लिव अंतर सो रस सोई जाने जियो अगम अगोचर साहिब मेरा कट कट अंतर वरते मेरा सदा अलिप्त जिया का दाता को विरला आप पछाने जियो प्रभ मिलने की ए निशानी मन इको सच्चा हुकुम पछाने सहज संतोष सदा तृप्ता से आनंद खसम कह पाने जियो हथी दिखी प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माने जियो माज महला पंजवा तीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार किया तिन करते है दुख का डेरा काया जियो मन तन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा खान न दिसे कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किस करे सो आपे आपे बुद्ध सियाण किछु न जापे अपने संतानो आप सहाये प्रभ परम पुलावा लाया जियो चरण कमल जन का आधारो आप पैर राम नाम वपारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्व समाया जियो माज महला पंजवा सो सत मंदर जित सच चित आई है सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तर्क सुहावी जित वसे हर जन सच्चे नाम वितों कुर्बानो जियो सच वडाई कीम न पाई कुदरत कर्म न कहना जाई त्याए त्याए जीवे जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सच सालाहन बड़ पाजमी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरे तुद पावे सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत ना जाने कोई थान संतर सच्चा सोई नानक सच त्याई।

जप अमृत नाम संत संग मेला, करी मूरत सिमरत पल वंजे, जीवन सफल तिथाई जियो। सिमरत नाम दोख सब लाके, अंतर बाहर हर प्रभु साथे, तै पाओ परम खोया गुरु पूरे, देखा सब नी जाई जियो। प्रभु समरथ वट ऊंच अपारा, नौ निज नाम परे पंडारा, आद अंत मद प्रभ सोई, दूजा लवे न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला, जाचित जाचे सादर वाला, देह दान ना।

रह पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जीओ। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, इकत दिन होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जीओ। माज महला पंजवा, मन तन दत्ता राम प्यारे, सर्व सुख दीजे अपना वारे, आठ पैर गो

जात ना आगे जाए, जिथे लेखा मंगी है तिथे छुटे सच कमाए, सतगुर सेवन से तनवंते ऐथे ओथे नाम समावणिया, तै पाए सिंगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए, अन दिन सदा रवे दिन राती मजीठे रंग बनावणिया, सबना पिरवसै सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले, मेरा प्रभ अब ऊंचो ऊंचा कर कृपा आप मिलावणिया, माया मोए इहो जग सुत्ता नाम विसार अंत विगुत्ता, जिसे सुत्ता सो जा गाए गुरमत सोजी पावणिया, अप्यो पिए सो परम गवाए गुर प्रसाद मुकत गत पाए, भगती रखा सदा बैरागी आप मार मिलावणिया, आप उपाए संदै लाए लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए, नानक नाम से आए सच राते जो तिस पावे सो कार करावणिया, माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर के शब्द परख परखाया, जिन सच पल्ले सच वखाने सच कसवटी लावणिया, हो वारी जियो वारी गुर की बाणी मन वसावणिया, अंजन माहे निरंजन पाया ज्योति ज्योत मिलावणिया, रहाओ इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अप अगम अपारा, गुरमुख हो वै सोई पाए आपे बख्श मिलावणिया, मेरा ठाकुर सच दिड़ाए गुर प्रसादी सच चित लाए, सचो सच वरतै सबनी थाई सच्चे सच समावणिया, वे परवाहो सच मेरा प्यारा किलविख अवगुण काटन हारा, प्रेम प्रीत सदा त्याई है पै पाए भगत दृढ़ावणिया, तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे आपे दे ना पछो तावे, सबना जिया का एको दाता सब दे मार जीवावणिया, हर तुद बाजो मैं कोई नाही हर तुद है सेवी तै तुद सलाही, आपे मेल लहो प्रभ साचे पूरे कर्म तू पावणिया, मैं होर न कोई तुद है जेहा तेरी नदरी सीजस देहा, अंदिन सार समाल हर राखे गुरमुख सह समावणिया, तुद जेवड मैं होर न कोई तुद आपे सिरजी आपे गोई, तू आपे ही कर पन सवारे नानक नाम सुहावणिया, माज महला तीजा सब कट आपे भोगण हारा, अलख वरते अगम अपारा, गुर के शब्द मेरा हर प्रभ त्याये सहजे सच समावणिया, हो वारी जियो वारी गुर शब्द मन वसावणिया, शब्द सूजे ता मन स्यो लूजे मनसा मार समावणिया, रहाओ पंच दूत मोहे संसारा मनमुख अंधे शुद्ध ना सारा, गुरमुख हो वैसो अपना कर राखे पंच दूत शब्द पचावणिया, एक गुरमुख सदा सच्चे रंग राते सहजे प्रभ सेवे अंदिन माते, मिल प्रीतम सच्चे गुण गावे हर दर शोभा पावणिया, एकम एक आप उपाया दुबदा दूजा त्रिविद माया, चौथी पौड़ी गुरमुख ऊंची सच्चो सच कमावणिया, सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सह समावे, गुरमुख करनी सच्चे सेवे साचे जाए समावणिया, सच्चे बाजो को अवर ना दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ, गुरमुख हो वैसो एको जाने एको सेव सुख पावणिया, जी जंत सब शरण तुम्हारी आपे तर देखे कच्ची पक्की सारी, अन दिन आपे कार कराए आपे मेल मिलावणिया, तू आपे मेले वेखे हदूर सब मैं आप रहा भरपूर, नानक आपे आप वरते गुरमुख सोजी पावणिया, माज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरले किने चख दीठी, अंतर प्रगास महारस की वह दर सच्चे शब्द बजावणिया, हों वारी जियो वारी गुर चरणी चित लावणिया, सतगुर है अमृत हर साचा मन नावे मैल चुकावणिया, रहाओ तेरा सच्चे किने अंत न पाया गुर प्रसाद किने विरले चित लाया, तुद सला है न रजा कबहू सच्चे नावे की पुख लावणिया, एको वेखा अवर न बिया
गुर प्रसादी अमृत पिया, गुर कै शब्द तिखा निवारी, सहजे सुख समावणिया। रतन पदार्थ पलर त्यागे, मन मुख अंधा दूजे पाए लागे, जो बीजे सोई फल पाए, सुपने सुख न पावणिया। अपनी कृपा करे सोई जन पाए, गुर का शब्द मन वसाए, अंदिन सदा रहे पै अंदर, कै मार परम चुकावणिया। परम चुकाया सदा सुख पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया, अंतर निर्मल निर्मल बाणी, हर गुण सहजे गावणिया। सिमरत शास्त्र वेद वखाणे, परमे पूला तत न जाने, बिन सतगुर सेवे सुख न पाए, दुखो दुख कमावणिया। आप करे किस आखे कोई, आखन जाइए जे पूला होई, नानक आपे करे कराए, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, आपे रंग हर रंग चढ़ाए, मन तन रत्ता रसना रंग चलूली, पै पाए रंग चढ़ावणिया। हौ वारी जियो वारी, निरपौ मन वसावणिया, गुर कृपा से हर निरपौ त्याया, बिख पौ जल शब्द तरावणिया। रहाओ मन मुख मुग्ध करें चतुराई, नाता तोता थाए ना पाई, जेहा आया तेहा जाती, कर अवगण पछोतावणिया। मन मुख अंधे किछु न सूजे, मरण लिखाए आए नहीं बूझे, मन मुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नावे जन्म गवावणिया। सच करनी शब्द है सार, पूरे गुर पाई है मोख द्वार, अंदर बाणी शब्द सुनाए, सच राते रंग रंगावणिया। रसना हर रस राती रंग लाए, मन तन मोहया सह सुभाए, सहजे पीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिलावणिया। जिस अंदर रंग सोई गुण गावे, गुर कै शब्द सहजे सुख समावे, हौ बलिहारी सदा तिन विटो, गुर सेवा चित लावणिया। सच्चा सच्चो सच पति जय, गुर प्रसादी अंदर पीजे, बैस सुखान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावणिया। जिसनो नजर करे सो पाए, गुर प्रसादी हो मैं जाए, नानक नाम वसे मन अंतर, दर सच्चे सोबा पावणिया। माज महला तीजा, सतगुर सेवे वड्डी वड्याई, हर जी अचिंत वसे मन आई, हर जियो सफल्यो बिरख है अमृत, जिन पीता तिस तिखा लहावणिया। हौ वारी जियो वारी, सत्संगत मेल मिलावणिया, हर सत्संगत आपे मेल है, गुर सबदी हर गुण गावणिया। रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हो मैं मैल गवाए, दर सच्चे शोभा पावणिया। बिन गुर नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिन लाए, बिन गुर सेवे सुख न होवी, पूरे पाग गुर पावणिया। एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखे, मोर्चा ना लागे जाहो मैं सोखे, अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए, गुर शब्दी सच समावणिया। बिन सतगुर कहो ना देखिया जाए, गुर कृपा कर आप जिता दिखाए, आपे आप मिल रहया, सहजे सहज समावणिया। गुरमुख हो वै सो इक स्यों लिवलाए, दूजा परम गुर शब्द जलाए, काया अंदर वणज करे वा पारा, नाम निधान सच पावणिया। गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, अंदिन रंग रता गुण गावे, अंदर महल बुलावणिया। सतगुरु दाता मिले मिलाया, पूरे पाग मन शब्द वसाया, नानक नाम मिले वड्याई, हर सच्चे के गुण गावणिया। माज महला तीजा, आप वंजाए ता सब किच पाए, गुर शब्दी सच्ची लिवलाए, सच वणन जै सच संग्रह, सच व्यापार करावणिया। हौ वारी जियो वारी, हर गुण अंदिन गावणिया, हौ तेरा तू ठाकुर मेरा, शब्द वड्याई देवणिया। रहाओ वेला वक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन भाया, सच्चे सेवे सच वड्याई, गुर कृपा ते सच पावणिया। पाओ भोजन सतगुर तुथे पाए,
अनरस चूके हर रस मन वसाए, सत संतोख सहज सुख बाणी पूरे गुरते पावणिया। सतगुर ना सेवै मूरख अंध गवारा, फिर ओए कित्थों पाइन मोख द्वारा, मर मर जमै फिर आवे जमदर चोटा खावणिया। सबदे साफ जाने ता आप पछाने, निर्मल बाणी शब्द वखाने, सच्चे सेव सदा सुख पाइन नौनिद नाम मन वसावणिया। सो थान सुहाया जो हर मन भाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अंदिन हर साला है साचा निर्मल नाद वजावणिया। मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, पूर कमावन दुख लागे पारा, परमे पूले फिरन दिन राती, मर जन में जन्म गवावणिया। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर के शब्द आधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया। माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पुलाणी, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोई न पावणिया। हौ वारी जियो वारी हर से ती चित लावणिया, हर सच्चा गुर भगती पाये सहजे मन वसावणिया। रहाओ सतगुर सेवे ता सब किछ पाए, जे ही मनसा कर लागे तेहा फल पाए, सतगुर दाता सबना वथू का पूरे पाग मिलावणिया। एहो मन मैला इक ना त्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए, तट तीरथ दिसंतर पवे अहंकारी, होर वधेरे हों मैं मल लावणिया। सतगुर सेवे ता मल जाए, जीवत मरे हर स्यों चित लाए, हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावणिया। बाज गुरु है अंग गुवारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता कमावे, फिर बिस्ता माए पचावणिया। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हो मैं ममता सबदे खोवे, अंदिन हर जियो सच्चा सेवी पूरे पाग गुर पावणिया। आपे बख्शे मेल मिलाए, पूरे गुरते नाम निध पाए, सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणिया। सदा हजूर दूर न जानो, गुर सबदी हर अंतर पछाणो, नानक नाम मिले वडियाई पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, ऐसे साचे सो आगे साचे, मन सच्चा सच्चे शब्द राचे, सच्चा सेवे सच कमावे, सच्चो सच कमावणिया। हौ वारी जियो वारी सच्चा नाम मन वसावणिया, सच्चे सेवे सच समावे, सच्चे के गुण गावणिया। रहाओ पंडित पढ़े साध न पावे, दूजे पाए माया मन परमावे, माया मोह सब सुध गवाई, कर अवगुण पछोतावणिया। सतगुरु मिले ता तत पाए, हर का नाम मन वसाए, शब्द मरे मन मारे अपना, मुक्ति का दर पावणिया। किलविख काटे क्रोध निवारे, गुर का शब्द रखे उधारे, सच रते सदा बैरागी, हो मैं मार मिलावणिया। अंतर रतन मिले मिलाया, त्रिविध मनसा त्रिविध माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी छके, चौथे पद की सार न पावणिया। आपे रंगे रंग चढ़ाए, से जन राते गुर शब्द रंगाए, हर रंग चढ़िया अत अपारा, हर रस रस गुण गावणिया। गुरमुख रिद्ध सिद्ध सच संजम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई, गुरमुख कार सच कमावे, सच्चे सच समावणिया। गुरमुख थापे थाप उथापे, गुरमुख जात पत सब आपे, नानक गुरमुख नाम ते आए, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत परलो सब दे होवे, सब दे ही फिर ओपत होवे, गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुख उपाय समावणिया। हौ वारी जियो वारी गुर पूरा मन वसावणिया, गुरते सांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाओ गुरमुख तरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पावन बैसंतर खेले विडाणी, सो निगुरा जो मरमर जमे निगुरे आवन जावणिया। तिन करतै इक खेल रचाया,
ताया शरीर है विच सब किच पाया शब्द पेद कोई महल पाए महले महल बुलावणिया सच्चा साहो सच्चे बन जारे सच वनन जै गुर हेत अपारे सच विहा जै सच कमावे सचो सच कमावणिया बिन राशि को वत क्यों पाए मनमुख पूले लोक सवाए बिन राशि सब खाली चले खाली जाए दुख पावणिया एक सच वनन जै गुर शब्द प्यारे आप करें सगले कुल पारे आए से परवान होए मिल प्रीतम सुख पावणिया अंतर वस्त मूड़ा बाहर पाले मनमुख अंधे फिरे बेताले जिथे वत होवे तिथो कोई न पावे मनमुख परम कुलावणिया आपे देवे शब्द बुलाए महली महल सहज सुख पाए नानक नाम मिले वड्याई आपे सुन सुन त्यावणिया माज महला तीजा सतगुर साची सिख सुनाई हर के तो अंत होए सखाई हर अगम अगोचर अनाथ अजूनी सतगुर कह पाए पावणिया हौ वारी जियो वारी आप निवारणिया आप गवाए ता हर पाए हर स्यों सह समावणिया रहाओ पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया सतगुर सेव सदा सुख पाया बिन भागा गुर पाईए नाही शब्द मेल मिलावणिया गुरमुख अलिपत रह संसारे गुर के तकिए नाम अधारे गुरमुख जोर करे क्या तिसनो आपे खप दुख पावणिया मनमुख अंधे सुध न काई आत्म काती है जगत कसाई निंदा कर कर बहु पार उठावे बिन मजूरी पार पहुंचावणिया एहो जगवाड़ी मेरा प्रभ माली सदा संभाले को नाही खाली जे ही वासना पाए ते ही वरते वासु वास जनावणिया मनमुख रोगी है संसारा सुखदाता विसरिया अगम अपारा दुखिए नित फिरे बिल्ला दे बिन गुर शांत न पावणिया जिनकी ते सोई बिद जाने आप करे ता हुकम पछाणे जेहा अंदर पाए तेहा वरते आपे बाहर पावणिया तिस बाजो सच्चे मैं होर ना कोई जिस लाए लए सो निर्मल होई नानक नाम वसे कट अंतर जिस देवे सो पावणिया माज महला तीजा अमृत नाम मन वसाए हौ मैं मेरा सब दुख गवाए अमृत बाणी सदा सलाहे अमृत अमृत पावणिया हौ वारी जियो वारी अमृत बाणी मन वसावणिया अमृत बाणी मन वसाए अमृत नाम ते आवणिया रहाओ अमृत बोले सदा मुख वैणी अमृत वेखे परखे सदा नैनी अमृत कथा कहे सदा दिन राती अवरा आख सुनावणिया अमृत रंग रता लिव लाए अमृत गुर प्रसादी पाए अमृत रसना बोले दिन राती मंथन अमृत पियावणिया सो किछ करे जो चित न होई किस दा हुक्म मेट ना सके कोई हुक्मे वरते अमृत बाणी हुक्मे अमृत पियावणिया अजब कम करते हर केरे क्यों मन पूला जांदा तेरे अमृत बाणी क्यों चित लाए अमृत शब्द बजावणिया

खोटे खरे तुद आप उपाए, तुद आपे परखे लोक सवाए, खरे पर खजाने पाए, खोटे परम पुलावणिया, क्यों कर वेखा क्यों सलाही, गुर प्रसादी सब सलाही, तेरे पाने विच अमृत वरसे, तू पाने अमृत की आवणिया, अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवे हृदय समाणी, नानक अमृत नाम सदा सुखदाता, पी अमृत सब कुख ले जावणिया, माज महला तीजा, अमृत वरसे सह सुवाए, गुरमुख विरला कोई जन पाए, अमृत पी सदा तृप्ता से, कर कृपा तृष्णा बुझावणिया, हौ वारी जियो वारी, गुरमुख अमृत पी आवणिया, रसना रस चाक सदा रहे रंग राती, सहजे हर गुण गावणिया, रहाओ गुर प्रसादी सहज को पाए, दुबदा मारे इक स्यों लिवलाए, नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया, सदना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कणेरी, तुझते बाहर किछ न होवे, गुरमुख सोजी पावणिया, गुरमुख तत है बिचारा, अमृत परे तेरे पंडारा, बिन सतगुर सेवे कोई न पावे, गुर कृपा ते पावणिया, सतगुर सेवे सो जन सो है, अमृत नाम अंतर मन मोह है, अमृत मन तन बाणी रत्ता, अमृत सह सुनावणिया, मन मुख पूला दूजे पाए खुआए, नाम ना लेवे मरे बिख खाए, अन दिन सदा विष्टा में वासा, बिन सेवा जन्म गवावणिया, अमृत पीवे जिसनो आप पियाए, गुर प्रसादी सहज लिव लाए, पूरन पूर रहा सब आपे, गुरमत नदरी आवणिया, आपे आप निरंजन सोई, जिन फिर जी तिन आपे गोई, नानक नाम समाल सदा तू, सहजे सच समावणिया, माज महला तीजा, से सच लागे जो तुद पाए, सदा सच सेवे सह सुभाए, सच्चे सब सच्चा सलाही, सच्चे मेल मिलावणिया, हों वारी जियो वारी सच सलाणिया, सच त्याएन से सच राते, सच्चे सच समावणिया, रहाओ जह देखा सच सबनी थाई, गुर प्रसादी मन वसाई, तन सच्चा रसना सच राती, सच सुन आख वखानणिया, मनसा मार सच समाणी, इन मन दिखी सब आवन जानी, सतगुर सेवे सदा मन नहीं चले, निज कर वासा पावणिया, गुर के शब्द हृदय दिखाया, माया मोह शब्द जलाया, सच्चो सच्चा वेख सलाही, गुर शब्दी सच पावणिया, जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम समाले सेवड पागी, सच्चे शब्द आप मिलाए, सत संगत सच गुण गावणिया, लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, ओ अगम अगोचर शब्द शुद्ध होवे, अंदिन सच शब्द सलाही, होर कोई ना कीमत पावणिया, पर परखा के सांत ना आई, तृष्णा जाले शुद्ध ना काई, बिख बिहाजे बिख मोह प्यासे, कूड़ बोल बिख खावणिया, गुर प्रसादी एको जाना, दूजा मार मन सच समाना, नानक एको नाम वरते, मन अंतर गुर प्रसादी पावणिया, माज महला तीजा, वर्ण रूप वरते सब तेरे, मर मर जमे फेर पवे कनेरे, तू एको ने चल अगम अपारा, गुरमती बूझ बुझावणिया, हौ वारी जियो वारी, राम नाम मन वसावणिया, तिस रूप न रेखिया वरन न कोई, गुरमती आप बुझावणिया, रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई, सतगुर सेवे प्रगट होई, गुप्त प्रगट वरते सब थाई, ज्योति जोत मिलावणिया, तिसना अगन जले संसारा, लोभ अभिमान बहुत अहंकारा, मर मर जन्मे पत गवाए, अपनी बिरथा जन्म गवावणिया, गुर का शब्द को विरला बूझे, आप मारे ता

गुर के सब सदर है समाए, सच सलाहे सब कट अंतर, सचो सच सुहावणिया। सच सलाही सदा हजूरे, गुर के शब्द रहा पर पूरे।

सुखदाता सेवन सुख पायन गुरमत मन वसावणिया हौ वारी जियो वारी सुख सह समाध लगावणिया जो हर सेवे थे सदा सोहे शोभा सुर सुहावणिया रहाओ सबको तेरा भगत कहाए से भगत तेरे मन पाए सत बाणी तुदे सलाहन रंग राते भगत करावणिया सबको सके हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता चूके फेरा जा तुद पावे ता नाए रचावे तू आपे नाओ जपावणिया गुरमती हर मन वसाया हरख सोग सब मोह गवाया इक स्यों लिव लागी सधी हर नाम मन वसावणिया भगत रंग राते सदा तेरे चाए नौ निद नाम वखरा मन आए पूरे पाग सतगुर पाया सब दे मेल मिले।

पिछू न होए, तू कर कर वेखे जाने सोए, आपे करे कराए करता, गुरमत आप मिलावणिया। कामन गुणवंती हर पाए, पै पाए सिगार बनाए, सतगुरु सेव सदा सुहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारण तिना ठौर न ठाओ, तम भूले ज्यों सुन्ने कर पाओ, हलत

कूड लिखे से कूड कमावे हैं, जल जावे कूड चितलावण्या। गुरुमुख सच्चो सच लिखे विचार, से जन सच्चे पावे मोख द्वार। सच कागज कलम मसवाणी, सच लिख सच समावण्या। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुर प्रसादी मिले सोई जन लेखे। नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावण्या। माज महल है तीजा, आत्म राम प्रवास गुरते होवे। होमे मैल लागी गुर सबदी खोवे। मन निर्मल अंदिन भगती राता, भगत करे हर पावण्या। हों वारी जियो वारी, आप भगत करन अवरा भगत करावण्या। तिना भगत जना को सदा नमस्कार कीजे, जो अंदिन हर गुण गावण्या। रहाओ आपे करता कारण कराए, जित पावे तित पारे लाए। पूरे भाग गुर सेवा होवे, गुर सेवा ते सुख पावण्या। मर मर जीवे ता किछ पाए, गुर प्रसादी हर मन वसाए। सदा मुक्त हर मन वसाए, सहजे सहज समावण्या। बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए, देश अंतर पवे दूजे पाए खुआए। बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्दे दुख पावण्या। तावत राखे ठाक रहाए, गुर प्रसादी परम पद पाए। सतगुर आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावण्या। एक कूड लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए। आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड बोल बिखावण्या। इस तन में मन को गुरमुख देखे, पाले पगत जा हो में सोखे। सिद्ध साधिक मोन तारी रहे लिव लाए, तिन भी तन में मन ना दिखावण्या। आप कराए करता सोई, होर के करे कीते क्या होई। नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावण्या। माज महला तीजा, इस गुफा में अकुट पंडारा। तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा। आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुर सबदी आप वजावण्या। हों वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावण्या। अमृत नाम महा रस मीठा, गुरमती अमृत पियावण्या। रहाओ हों में मार बजर कपाट खुलाया। नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्द नाम न पाए कोई। गुर कृपा मन वसावण्या। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चामन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावण्या। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम नाल है बहुत व्यवहार दुख पाए। मन मुख अंधे सूजे नाही, फिर किर आए गुरमुख वत पावण्या। गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखे हो में मैल जाए। बैस सुतान सब हर गुण गावे, सच्चे सबद समावण्या। नौ दरखा के तावत रहाए, दसवें निज करवासा पाए। ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावण्या। बिन शब्द अंतर अनेरा, ना वसल है ना चूके फेरा। सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे पाग मिलावण्या। गुप्त प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई। नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावण्या। माज महला तीजा, गुरमुख मिले मिलाए आपे। काल न जो है दुख न संतापे, हौमे मार बंधन सब तोड़े, गुरमुख शब्द सुहावण्या। हों वारी जियो वारी, हर हर नाम सुहावण्या। गुरमुख गावे गुरमुख नाचे, हर से ती चित लावण्या। रहाओ गुरमुख जीवे मरे प्रवाण, आर जा ना छीजे शब्द पछाण। गुरमुख मरे न काल न खाए, गुरमुख सच समावण्या। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विच्चों आप गवाए। आप करे कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारण्या। गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख होमे चूके पीर।
गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सह समावणिया। गुरमुख नाम मिले वड्याई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावणिया। गुरमुख अन दिन सब दे राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्दे भगत करावणिया। बाज गुरु है अंध अंधारा, जम काल गरठे करें पुकारा, अन दिन रोगी बिष्टा के कीड़े बिष्टा में दुख पावणिया। गुरमुख आपे करे कराए, गुरमुख हृदय उठा आप आए, नानक नाम मिले वड्याई पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, एका जोत जोत है शरीरा, सबद दिखाए सतगुर पूरा, आपे फर्क की तोन कट अंतर आपे बनत बनावणिया। हों वारी जियो वारी हर सच्चे के गुण गावणिया, बाज गुरु को सहज न पाए गुरमुख सहज समावणिया। रहाओ तू आपे सो है आपे जग मोहे, तू आपे नदरी जगत परोवे, तू आपे दुख सुख दे रहे करते गुरमुख हर देखावणिया। आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुर मन वसाए, शब्दे उपजे अमृत बाणी गुरमुख आप सुनावणिया। आपे करता आपे पुगता, बंधन तोड़े सदा है मुक्ता, सदा मुक्त आपे है सच्चा आपे अलख लखावणिया। आपे माया आपे छाया, आपे मोह सब जगत उपाया, आपे गुण दाता गुण गावे आपे आप सुनावणिया। आपे करे कराए आपे, आपे थाप उठापे आपे, तुझते बाहर कछु न होवे तू आपे कारे लावणिया। आपे मारे आप जीवाए, आपे मेले मेल मिलाए, सेवा ते सदा सुख पाया गुरमुख सहज समावणिया। आपे ऊंचा ऊंचो होई, जिस आप विखाले सो वेखे कोई, नानक नाम वसै कट अंतर आपे वेख विखालणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ भरपूर रहा।

जग जीवन मन वसावणिया, हर जग जीवन निरपौ दाता, गुरमत सह समावणिया रहाओ। कर मैं करती तौल पताला, काही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रह सुखदाता, गुरमत सह समावणिया। काया अंदर हो मैं मेरा, जमन मरण न चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे, सचो सच त्यावणिया। काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दोही मिलके सृष्ट उपाई, दोवे मार जाए इकत कर आवे, गुरमत सह समावणिया। कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट सब रह सुखदाता, अंदर नाम त्यावणिया। अंतर जोत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलावणिया।

सद पावणिया। आपे वस राखे आपे दे, गुरमुख वणजे केई के, नानक जिस नजर करे सो पाए, पर कृपा मन वसावणिया। माज महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए, गुर के शब्द पाओ दूजा जाए, हर निर्मल सदा गुण दाता, हर गुण में आप समावणिया। हो वारी जियो वारी, सच सच्चा हृदय वसावणिया, सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावणिया। रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता, सेवक सेवे गुरमुख हर जाता, अमृत नाम सदा जन सोवे, गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हो में परम चुकाया, अंदिन नाम सलाहन रंग राते, गुर कृपा ते पावणिया। गुर के शब्द एहो गुफा विचारे, नाम निरंजन अंतर वसे मुरारे, हर गुण गावे शब्द सुहाए, मिल प्रीतम सुख पावणिया। जम जागाती दूजे पाए कर लाए, नामो पुल्ले देश जाए, करी मोहत का लेखा लेवे, रतियो मासा।

पाया जाए। कृपा करे सा सतगुरु पेटे नदरी मेल मिलावणिया। दूजे पाए पड़े नहीं बूझे त्रिविद माया कारण लूजे। त्रिविद बंधन टूटे गुर शब्दी गुर शब्दी मुक्त करावणिया। यो मन चंचल वस ना आवे दुबदा लागे दे दिस्तावे। बिखा कीड़ा बिखने राता बिखी माए पचावणिया। हों हों करे तै आप जनाए बहु कर्म करे किस खाए न पाए। तुझते बाहर किछु न होवे बसे सबल सुहावणिया। उपजे पचे हर बूजे नाही अंदिन दूजे पाए फिराही। मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया। फिर परदेश सिगार बनाए मन मुख अंग ऐसे कर्म कमाए। हल्क न सोभा पलत न टोई बिरथा जन्म गवावणिया। हर का नाम किने विरले जाता पूरे गुर के शब्द पछाता अंदिन।

पंडित होई आप तरह सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर रस चख साध पावणिया हर रस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत् ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौ निद पाए त्रै गुण मेट समावणिया हो मैं करे ने कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करे सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हो मैं मार एनस प्रीत शब्द साचे हर सर वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई स्नान करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हो मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा फट चानन आ

माया मोह जगत सवाया, त्रैगुण जीसे मोहे माया, गुर प्रसादी को विरला बूझे, चौथे पद लिवलावणिया। हौवारी जियो वारी माया मोह शब्द जलावणिया, माया मोह जलाए सो हर्षो चित लाए, हर दर मैली सो बा पावणिया। रहाओ देवी देवा मूल है माया, सिमरत फास जिन उपाया, काम क्रोध पथरिया संसारे, आए जाए दुख पावणिया। तिस विच ज्ञान रतन इक पाया, गुर प्रसादी मन वसाया, जप सत संजन सच कमावे, गुर पूरे नाम ते आवणिया। पेयड़े तन परम पुलाणी, दूजे लागी फिर पछो ताणी, हलक पलक दोवे गवाए, सुपने सुख न पावणिया। पेयड़े तन कंत समाले, गुर प्रसादी वेखे नाले, फिर कैसे रह रंग राती, शब्द सिंगार बनावणिया। सफल जन्म जिना सतगुर पाया, दूजा पाव गुर शब्द जलाया, एको रव रहा कत अंतर, मिल सत संगत हर गुण गावणिया। सतगुर न सेवे सो काहे आया, त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया, मन मुख नाम चेतना आवे, बिन नावे बहुत दुख पावणिया। जिन शिष्ट साजी सो

गुर प्रसाद करे नाम देवे नामे नाम समावणिया। तू आपे सच्चा सृजनहारा पंक्ति परे तेरे पंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजे सहज समाध लगावणिया। आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे तुझ साला ही प्रीतम मेरे तुझ बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणिया। अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करें तू लह मिलाई।

गुरुमुख सदा रह रंग राती मिल सच्चे शोभा पावण्या। मनमुख कर्म करे अंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर आवन जावण्या। आपे करता दे वड्याई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुर शब्दी सुख पावण्या। माध महला पंजवा कर पहला अंतर अलख ना जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर सबते ऊंचा गुर के शब्द लखा।

सो बत्ता कौन सो गिरही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जियो। किन विद बांदा किन विद छूटा किन विद आमन जामन तूटा कौन कर्म कौन ने कर्मा कौन सो कहे कहाए जियो। कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख।

कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ते आए, किन विद कीर्तन गाए जियो। गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता, गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता, तन गिर ही उदासी गुरुमुख, गुरुमुख कीमत पाए जियो। होमे बांदा गुरुमुख छूटा, गुरुमुख आन जान टूटा, गुरुमुख कर्म गुरुमुख ने कर्मा, गुरुमुख करे सो सुभाए जियो। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया।

भक्ति पाए पाए पंडारा दया तार राखे तुझसे पूरे कर्म समावण्या। अंधकूप ते कंडे चाड़े कर कृपा दास नव निहाले गुण गावे पूरन अविनाशी कह सुन तोट ना आवण्या। ऐसे ओथे तू है रखवाला मात गर्भ में तुम ही पाला माया अगर न पोहे तिनको रंग रते गुण गावण्या। क्या गुण तेरे आख समाली मंतन अंतर तुद नगर निहाली तू मेरा मीत।

दे प्रभ अवगाहिया ए रस भोगन पातशाहिया मंदा मूल न उपजो तरे सच्ची कारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हरे तेरा थिर होआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल ना।

पूरे चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे कट कट एक वरतदा जल फल महियल पूरे पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की दूरे सब छदाई खसम आप हर जप पई थरूरे करते किया कपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे।

हर ना न मिलिए साजने कत पाए विश्राम। जित कर हर कंस न प्रगटी पथ नगर से ग्राम। सर्व सिगार तंबोल रस।

गुचना प्रविन अवर न कोए, प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती प्रभ विलो प्राप्त होए, वे सास सुहावा ता लगे जा संत पेटे हर सोए। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अग्गे सब निवन, हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है।

मानन हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संदियास दोए पाए विगुचिए गल पई सुजम की फास

पास तब तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा किस लगे जिस मन